0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि भारत की क्षमताएं अन्य देशों के लिए भी अवसरों के नए द्वार खोलें।
1: इनोवेशन की पावर भी ऐसी ही है, एक आइडिया को प्रोडक्ट में बदलना, एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलना, यह अपने आप में एक बड़ी क्षमता है। लेकिन जब यह अवसर समाप्त

0: आज के अधिक से अधिक लोगों को मिलता है तो शक्ति का संतुलन बनता है और इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भारत की स्टार्टअप जर्नी इसी बदलाव का उदाहरण है।
1: श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सहायता की है।
0: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर से हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो। और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: श्री मोदी ने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2000 के बाद से स्टार्टअप के लिए भारत में काफी विस्तार हुआ है और स्टार्टअप्स की संख्या 2,50,000 को पार कर गई है। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया है। ये लोग राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। पूर्वी दिल्ली में 3 नए प्रदर्शन स्थल रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान सूचित किए गए हैं। नेपाल में आई बाढ़ के कारण मध्य क्षेत्र में ट्रैकिंग और पुल ढहने से विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक विदेशी ट्रकर्स फंस गए हैं। काठमांडू से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में गोरखा जिले में तड़के हुए भूस्खलन के बाद आज अधिकारियों ने 12 विदेशियों सहित 321 लोगों को सुरक्षित बचाया। सेना ने कहा है कि नदी का जलस्तर कम होने के बावजूद बचाव अभियान कल भी जारी रहेगा। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत भी आज अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में आज 0.6% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 433 अंक की वृद्धि के साथ 72,357 पर था, जबकि निफ्टी 22,490 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया.
1: इनोवेशन की पावर भी ऐसी ही है, एक आइडिया को प्रोडक्ट में बदलना, एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलना, ये अपने आप में एक बड़ी क्षमता है. लेकिन जब यह अवसर समाज के अधिक से अधिक लोगों को मिलता है तो शक्ति का संतुलन बनता है और इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है. भारत की स्टार्टअप जर्नी इसी बदलाव का उदाहरण है.
0: The Prime Minister said the government's constant endeavor is to ensure that India's capabilities open new doors of opportunity for other countries as well. Mr. Modi highlighted that India had lifted 25 crore people out of poverty over the past decade.
1: Power ke purpose par jo focus hai, yahi soch governance mein bhi zaruri hai. Sarkar ke

शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप हमें सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 MHz पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर। दोस्तों, शक्ति भक्ति और सकारात्मकता का पर्व नवरात्र शुरू हो चुका है और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। त्योहारों की रौनक ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है जीवन में और माँ दुर्गा की आराधना का पर्व चल रहा है। नवरात्रि यानी 9 रात्रि 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा भक्ति और आराधना का समय। इन दिनों वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। मंदिरों में घंटियों की गूंज, माता की चौकियों की भक्ति, घरों में जलते दीपक और चारों ओर सुनाई देती है जय माता की गूंज, मन को एक अद्भुत शांति देती है। और खास तौर पर इस नवरात्रि में मां के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें और प्रार्थना करें कि मां दुर्गा हर घर में सुख शांति स्मृति और खुशियां लेकर आए। मां की भक्ति में शक्ति है और मां के आशीर्वाद में सुख है और मां के नाम से ही हमारे दिलों में विश्वास है।

और दोस्तों सच में इन दिनों हमें अपने जीवन से नकारात्मकता विचारों को दूर करके प्रेम करुणा विश्वास और सकारात्मकता को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। जी हाँ, और इसी पर विशेष कार्यक्रम आप सुनते हैं नवरात्र के अवसर पर शक्ति आराधना माँ चंद्र घंटा। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। नवरात्र के इस पावन अवसर पर आइए सुनते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम शक्ति आराधना। आज हम देवी भगवती के पावन रूप माँ चंद्रघंटा के बारे में जानेंगे।

या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। दुर्गा सप्तशती में, जिसे कि हम देवी महात्म्य के नाम से भी जानते हैं, हम दुर्गा की आराधना, दुर्गा की स्तुति प्राप्त करते हैं। दुर्गा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें महाभारत में प्राप्त होता है। दुर्गा शब्द का यदि हम अर्थान्वेषण करें तो एक ओर तो यह हमारे सारे सुखों को देने वाली, हमारे दुखों को दूर करने वाली है, लेकिन जब शब्द पर ध्यान देते हैं तो इसका सीधा अर्थ होती है दुर्गति और दुर्भाग्य से बचाने वाली देवी दुर्गा है। दुर्गा के विविध रूप हैं। हम इस नवरात्रि के अवसर पर आज देवी दुर्गा के तृतीय रूप को जानते हैं और वह तृतीय रूप चंद्रघंटा नाम से सुख्यात है। प्रश्न उत्पन्न होता है कि चंद्रघंटा यह नाम पड़ा क्यों? अगर इसका हम अर्थ लें तो वह अर्थ इस प्रकार से आता है कि चंद्र घंटायाम यस्याह सा, अर्थात जो आह्लादकारी, जो वो शीतल किरणों वाला जो चंद्रमा है, उन चंद्रमा को जो धारण करे, या चंद्रमा जिसके घंटा में स्थित हो। पुनः एक नई परेशानी कि यह घंटा क्या है। हम उस घंटा के अर्थ, जो बजने वाली घंटी है, वह ना लें, बल्कि यह घंटा हम पूरा आवरण, पूरा संसार, या पूरा जिसको हम कह सकते हैं पूरी परिधि अगर हम लें, तो यहां पर इस प्रकार से अर्थ होता है चंद्रघंटा का। और यह जो है चंद्रघंटा के उस आह्लादक रूप का वर्णन है, सौम्य रूप का वर्णन है, जिन्हें देख करके हम अपने अंतःकरण में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, जिनके दर्शन से हमें शीतलता की प्राप्ति होती है। दुर्गा का यह रूप, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शीतलता दायिनी है, शांति दायिनी है। यद्यपि दुर्गा की जब जब चर्चा होती है, जब जब इनका उल्लेख होता है, तो इनका साक्षात संबंध उस भयंकर रूप से जोड़ दिया जाता जहां पर वे महिषासुर का मर्दन करते हैं या रक्त बीज बध

या आप कह लें कि अनेक ऐसे दैत्यों और राक्षसों का हनन करने वाली देवी के रूप में हम दुर्गा की आराधना करते हैं, लेकिन देवी केवल अशुभ का हनन करती हैं। लेकिन हमारी जो देवी हैं, शक्ति स्वरूपा देवी हैं, वो सौम्य हैं, वो चंद्रमा के समान शीतल किरणों को बिखेरने वाली हैं। कदाचित यह भी एक आधार हो सकता है कि इस दुर्गा के सौम्य रूप को हमने चंद्रघंटा कहा, और मार्कंडेय पुराण के देवी जो कवच है, देव्या कवचम है, देवी महात्म्य के प्रारंभ में जो हम देव्या कवचम प्राप्त करते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से तृतीयम चंद्र घंटेति शब्द कह के दुर्गा के इस स्वरूप की आराधना की गई है। यही कारण है कि यह दुर्गा देवी हमारी वो मैया है जो सदैव जगमग ज्योति उजागर करती है, सदैव इस विश्व को अपने उस शीतल शांत लेकिन आह्लादक किरणों से प्रकाशित करती हैं। तो उसी मैया माता देवी इस चंद्रघंटा से हम सभी आराधना करते हैं कि हमारे जीवन में भी जगमग ज्योत उजागर कर

अभी आपने देवी भगवती के पावन रूप माँ चंद्रघंटा के बारे में जाना। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर पंकज मिश्रा। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रश्मि कुकरेती।

0: और दोस्तों आइए आप सुनते हैं एक विशेष बातचीत डॉक्टर सुखविंदर सिंह पसरण वशिष्ठ विशेषज्ञ एवं एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली से और नीलू सूरी की बातचीत। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। आंगन के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कहते हैं कि चलना ही जिंदगी है, लेकिन जिंदगी बोझ बन जाती है जब हमें चलने फिरने उठने बैठने में यहाँ तक कि रोजमर्रा के सभी कामों में तकलीफ आती है। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें पता चलता है जी हमें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है। क्या है ये बीमारी? इसी जानकारी को देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह बसरान, जो कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एज ए एसोसिएट प्रोफेसर सीनियर कंसल्टेंट एज वेल एज रोबोटिक स्पेशलिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद और घर आंगन के सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, जैसे कि हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो अक्सर लोगों में एक कंफ्यूजन सा हो जाता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो ये क्या दोनों ही जोड़ों की बीमारी है? तो अगर हम समझे ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या और रूमेटॉइड आर्थराइटिस से ये कितना लगभग अलग है?
1: देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो मेनली एक तरह से एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जैसे कि जो हमारे जोड़ है उसमें भगवान ने हमें एक कार्टिलेज लेयर, एक तरह की एक चिकनाहट वाली परत दी है जिससे कि घुटनों में और जोड़ों में प्रॉपर मूवमेंट हो सके। सो जैसे जैसे हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो कई बार ये घिसते चले जाते हैं, तो इस तरह की जो घिस जाने से जो ये बीमारी आती है, जिसे हम बीमारी ना कहकर ये कह सकते हैं कि एक तरह का ये उम्र के साथ बढ़ने वाली समस्या है, उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इससे काफी मामलों में थोड़ी सी अलग है, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो हमारा शरीर है उसके अंदर कुछ जो ये लेयर्स हैं, तो शरीर जो है उनको ही एक तरह से अपने एक दुश्मन की तरह लेने लग जाता है और उसी के अगेंस्ट एक्ट करने लग जाता है, उसी के खिलाफ हमारे जो खुद का शरीर ही काम करने लग जाता है और उसकी वजह से हमारे जो जोड़ हैं वो उनमें नुकसान हो जाता है। तो दोनों ही, आर्थराइटिस का मतलब है जोड़, एक ग्रीक शब्द है उससे आया है ये, तो नुकसान तो दोनों ही तरह की बीमारियों में जोड़ों में ही है, मगर ऑस्टियोआर्थराइटिस एक मेनली उम्र दराज लोगों में होने वाली, उम्र के साथ होने वाली समस्या है, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक तरह की बीमारी है जिसे कि हम एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी कहते हैं, जो कि ये हमारा शरीर जब हमारे शरीर के ही अंगों के खिलाफ काम करने लग जाता है तो उसमें होती है।
0: डॉक्टर, आपने दो शब्दों का यहाँ इस्तेमाल किया, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी ऑस्टियो की बात करें यानी हड्डी, और आर्थराइटिस जोड़ों का। तो डॉक्टर साहब, घुटनों में तो जोड़ होते ही हैं और भी कई जगह जोड़ होते हैं, तो क्या उसमें भी इश्यूज आते हैं इसे?
1: जी हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस तो किसी भी जोड़ में हो सकता है, मुख्यतः ये घुटनों में, क्योंकि हमारा शरीर का पूरा वजन आता है, या फिर कूल्हे की जो हमारी हड्डी होती है, ये जो कूल्हे का जोड़ होता है, ये मुख्यतः इसमें इन्वॉल्व होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में। जो हमारे जोड़ है किसी भी वजह से अगर उसमें घिसाव आ जाता है तो उससे हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। मुख्यतः इसे दो तरह से कह सकते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो कि उम्र के साथ

0: करना है सब में, लेकिन कभी किसी वजह से किसी को चोट लग जाए जोड़ में, तो उससे ये कह सकते हैं कि ये एक्सेलरेट हो जाती है। यही जो समस्या है, ये जो किसी को 60 साल या 70 साल में होनी चाहिए थी, वो थोड़ा पहले 40 साल में भी हो सकती है वो प्रॉब्लम, अगर वो उसकी जो अलाइनमेंट है या फिर अंदर की जो परत है वो घिस जाती है जल्दी किसी चोट की वजह से, तो भी ये जल्दी हो सकती है।
1: डॉक्टर साहब, अगर शोल्डर की बात करें तो कंधे में भी जोड़ है, क्या उसमें भी हो सकते हैं चांसेस आर्थराइटिस होने के?
0: हाँ, उसमें भी हो सकते हैं, मगर कंधों में अक्सर पाया गया कि कंधा हमारा थोड़ा सा डिफरेंट ज्वाइंट है, क्योंकि वो जो जोड़ है उसमें ना मसल्स जो होती है मांसपेशी, उसका जो है ज्यादा उपयोग होता है। तो अक्सर कंधे में पाया गया है कि उसके आसपास की जो मसल है, जिसे हम रोटेटर कफ कहते हैं, उसमें वीकनेस आ जाती है, उसके बाद धीरे धीरे जोड़ घिस जाते हैं। पर जबकि जो घुटना हो गया या कूला हो गया, इसमें जो है हमारा, क्योंकि हम ज्यादा चलते हैं कि इन पे पूरा वजन आता है, और अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहेंगे कि जब तक रेस्ट कर रहे हैं तब तक ठीक है, और जैसे ही उठे, क्योंकि उसमें मूवमेंट आती है नी में, या फिर सीढ़ियां चढ़े, तो उसमें उनको ज्यादा तकलीफ होती है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लोग हैं। उसमें जब कुछ समय बैठे रहेंगे तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे चलेंगे या फिर वजन डालेंगे घुटने में तो इनकी तकलीफ बढ़ती है।
1: तो डॉक्टर साहब, दो जोड़ जो हैं, जो मुख्यतः रूप से आपने बताया कि एक तो आपका कूल्हे का जोड़ हो गया और एक घुटने का जोड़, जो कि उम्र दराज लोगों को बहुत परेशान करता है। डॉक्टर साहब, इसे हम कभी कभी सुनते हैं कि घिसाव की बीमारी भी बोलते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: तो कैसे हम उसको समझे कि कैसे इसे घिसाव की बीमारी है, और अगर हम अर्ली स्टेज की बात करें, शुरुआती तौर पर क्या ऐसे खास लक्षण है जब हमें लगे कि भाई अब थम जाना चाहिए और डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए कि बचाव हो जाए, कि आगे ना बढ़े?
0: हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसा है कि जो भगवान ने हमें जो जोड़ दिए हैं, वो उसमें एक तरह की एक लेयर दी है, जिसे लगभग 2 से 3 mm जिसकी थिकनेस होती है, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। तो वो जो कार्टिलेज है, धीरे धीरे समय के साथ घिस जाती है। तो जैसे जैसे वो घिसती है, तो शरीर में नॉर्मली हल्का फुल्का दर्द होना शुरू होता है, फिर वो बढ़ता चला जाता है। जैसे शुरू या मौसम के साथ कभी लगता है उनको कि जी सर्दियों में ज्यादा हो रहा है, या फिर कभी लगता है कि नॉर्मल प्लेन लेवल पे अगर चल रहे हैं तो ठीक है, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है, और ये समय के साथ बढ़ता रहता है। तो मैं ही कहूंगा कि जैसे ही आपको ये महसूस हो कि अब आपको डेली एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं उसमें अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, देन आई थिंक दैट इज द टाइम जब आपको एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि यू सी दे से कि स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। तो जितना जल्दी आप जाएंगे उतना ही बेहतर हम इस पे आपको इलाज दे पाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद इसको ठीक करना जरूरी है, और हम ये चाहते हैं कि इसमें और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, या फिर बिकॉज जब हम लेटर स्टेज में अगर आप हमारे पास आएंगे तो शायद सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अर्ली स्टेज में इस पे काम करेंगे तो हम सर्जरी से भी बचाव हो सकता है, और हमारी जो दिनचर्या है, जो रोज के काम काज है, उसमें हमें बहुत फायदा हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब, देखा गया है कि घुटनों में चलते वक्त चटक की आवाज आती है, आवाज आना भी क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक लक्षण है?
0: अपने आप में आवाज आना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, कुछ लोगों में ये नॉर्मल भी पाई जाती है, मगर आवाज के साथ अगर उसमें दर्द भी हो रहा है, या फिर उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ भी मूवमेंट कर रहे हैं, घुटने मोड़ रहे हैं या सीधा कर रहे हैं, उसमें उनको दिक्कत हो रही है, तब जरूर हम उसको ज्यादा सीरियसली लेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम उसको एक बार इवेल्युएट करें और फिर अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करते हैं। देन डिपेंड करता है वो किस तरह की दिक्कत है। जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है, आपने पहले पूछा था, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पेशेंट यू सी टिपिकली जो प्रेजेंट करता है, वो कहेगा कि मैं आराम से बैठा था लेकिन मैं थोड़ी देर चलूंगा तो मेरा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी सिम्टम्स में ग्रेजुअली। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जैसे जैसे मरीज चलेगा उसको और ज्यादा वो उसमें घिसाव की बीमारी की वजह से उसको और ज्यादा तकलीफ बढ़ेगी।
1: जी जी। डॉक्टर साहब, अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं, MRI करा लीजिए, CT करा लीजिए, आप एक सरकारी अस्पताल से हैं, तो किस तरह की इन्वेस्टिगेशन जो है कि जो महंगी भी ना हो और अस्पताल में मरीज को इलाज भी मिल जाए और पता चल जाए कि हाँ जोड़ों में घिसाव का इशू आ चुका है और अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं आर्थराइटिस की तरफ?
0: देखिए, जहां तक जांच का सवाल है, जांच तो हर एक जांच की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। आप कह सकते हैं कि एक ग्रेडेड रिस्पांस की जरूरत है। हर पेशेंट जो हमारे पास आता है उसको सीधा ही बिल्कुल MRI या इस तरह की सोफिस्टिकेटेड और महंगी जांच की आवश्यकता नहीं होती है। एक सिंपल एक्सरे हम करवा सकते हैं। एक्सरे से हमको सबसे पहले तो ये फायदा रहता है कि एक बेसलाइन मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि आप में कोई परेशानी है, मगर अगर आपको तकलीफ तो है और अब इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एक मरीज हमारे पास आया है उसको दर्द है, देन वी हैव टू एक्नॉलेज इट कि हाँ उसको दर्द है। जरूरी नहीं है कि उसको कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो हम उनका एक सिंपल एक बेसलाइन एक्सरे करा लेते हैं। और बेसलाइन एक्सरे में हमें इम्पोर्टेंट ये है कि वो खड़े होकर, अगर मरीज क्योंकि चल के आया है और वो खड़ा हो सकता है, तो हम हमेशा ये ऑर्डर करते हैं इट हैज टू बी इन द स्टैंडिंग पोजिशन वेट बेयरिंग, क्योंकि तभी हम एक्चुअल में जो गैप जिसे कहते हैं कि ग्रेजुअली हो जाता है, कम हो जाता है घुटने में जो उनका जो

0: स्पेस है क्योंकि ये घिस जाती है कार्टिलेज, जो इसका कुशनिंग इफेक्ट है वो कम हो जाता है. तो स्टैंडिंग पोजिशन में एक हम एक्सरे करवाते हैं जिससे हमें पूरी इसके ऊपर फर्दर जानकारी हो जाती है कि वो किस स्टेज पे है. देयर आर वेरियस स्टेजेस 1, 2, 3, 4. तो उसमें हम एक बार हमें उसको आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम को, फिर उसकी स्टेज के हिसाब से हम उसको ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं.
1: सर, कैल्शियम और विटामिन डी की बात करें, अक्सर लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं और कैल्शियम लेना शुरू करते हैं और विटामिन डी भी लेते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं रहता कि वो कितने टॉक्सिक हो सकते हैं. उसके बारे में जरूर आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि विटामिन डी लेना भी है तो कैसे लेना है, क्या आपसे पूछ के लें, कितना लेना है और कैसे लें, इससे थोड़ा आप हमें बताएं.
0: देखिए, इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, ये जो जोड़ है, ये हमारा जोड़ जरूर घिसाव की बीमारी है, लेकिन ये सिर्फ बोन के अलावा हमें इसके आसपास के जो लिगामेंट है, मसल्स है, उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा और उसकी भी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी. तो सिर्फ कैल्शियम विटामिन, बिकॉज ये जो कैल्शियम और विटामिन डी की आप बात कर रहे हो, ये मेनली एक हड्डी की मजबूती के लिए है, उसकी स्ट्रेंथ के लिए है. जहां तक जोड़ों का सवाल है, क्योंकि वहां पर हमें चाहिए स्मूथनेस चाहिए जिससे कि वो आराम से मूवमेंट हो सके, तो जोड़ों में इतना कैल्शियम और विटामिन डी का बहुत ज्यादा रोल नहीं है. और किसी भी तरह की जो भी मेडिसिन है, ऑफकोर्स हमको बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के या सलाह के लेना तो नुकसानदायक हो सकता है. तो हमेशा ही कैल्शियम और विटामिन डी ऑफकोर्स लेना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह से लें आप तो जरूर आपको फायदा करेगा.
1: ओवर द काउंटर जाके नहीं कि खुद खाते रहें, ये विटामिन और सप्लीमेंट से सुरक्षित नहीं.
0: हाँ बिल्कुल, अपने आप से लेना तो कभी भी कोई भी चीज इस तरह की सुरक्षित नहीं है. ऑल्दो एक बार आप डॉक्टर से सलाह देके थोड़ा लंबे समय तक 2-3 महीने तक लें, या फिर आप इसे थोड़ा स्टैगर कर सकते हैं कि 2-3 महीने ली, फिर 15-20 दिन नहीं ली, फिर एक बार डॉक्टर से बात कर ली, जो कि आपको रेगुलर कभी वंस अ ईयर और वंस एवरी फ्यू मंथ्स जो है कुछ टेस्ट करा सकते हैं. सो दैट, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो बहुत ज्यादा लेना भी नुकसानदायक हो सकता है.
1: डॉक्टर, एडवांस स्टेज की बात करें कि एडवांस स्टेज का तो एक ही ट्रीटमेंट रहता है कि अब आप सर्जरी कराएं, पर मैं उससे पहले चाहती हूं कि अगर हम एक्सरसाइज की तरफ रहें तो कितनी सुरक्षित हैं ये.
0: हाँ बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा था कि जो बोन्स हैं, ये बोन्स जो हैं ये सराउंडेड बाय मसल्स होती हैं, और जो मसल्स की स्ट्रेंथ है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो हमारे जोड़ों के दर्द को कम करने में बहुत ही सहायक होता है. मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूं कि सिर्फ जोड़ पे हम ना ध्यान देके एज ए होलिस्टिक अप्रोच हम पेशेंट को ट्रीट करें. उनको बोन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कैल्शियम विटामिन डी जो भी देना है वो दें, अलॉन्ग विद दैट जो एक्सरसाइज है, फिजियोथेरेपी है, उसके रोल को हम कम करके नहीं आंक सकते. और उसके अलावा कुछ एक चीजें जैसे कि परहेज भी हम उनको एडवाइस करते हैं. कुछ पोजीशन जैसे कि स्क्वाटिंग पोजीशन, जैसे कि इंडियन टॉयलेट ना इस्तेमाल करके वेस्टर्न इस्तेमाल करें, सिटिंग क्रॉस लेग को अवॉइड करें, और उसके अलावा एक बहुत जो कि वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड या वेरी वेल एक्नॉलेज फैक्ट है, दैट इज वेट रिडक्शन सम अमाउंट. बिकॉज हमारे जोड़ हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें पूरे हमारे शरीर का वजन जो है वो पूरा लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि 10 किलो, अगर 1 किलो, 2 या 3 किलो भी अगर आप अपना वजन कम कर रहे हैं तो उसके वजह से हमारे जो जोड़ों पे जो वजन है वो एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होता है ना. ये 4 से 8 गुना ज्यादा वजन उसके ऊपर पड़ना हम कम कर रहे हैं, और उसकी वजह से हम बहुत ही ज्यादा अपने दर्द में और उसकी वजह से होने वाली परेशानियों से बचाव कर सकते हैं.
1: डॉक्टर साहब, एडवांस स्टेज की बात करूं कि अब तो जाना ही पड़ेगा सर्जरी के लिए, और अभी आप जैसे रोबोटिक सर्जरी के सीनियर एक्सपर्ट हैं, आरएमएल हॉस्पिटल से भी हैं, बहुत खुशनसीबी की बात है लोगों के लिए कि रोबोटिक सर्जरी अब आरएमएल में आ चुकी है. कितनी सेफ है सर, अगर टीकेआर की बात करें, टोटल नी रिप्लेसमेंट की, अभी तक तो वही जो ट्रेडिशनल वे चल रहा था उससे कितना अलग है डॉक्टर?
0: देखिए, नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सुलझी हुई और काफी टाइम टेस्टेड सर्जरी है. जब जरूरी हो तो मैं, बिकॉज सर्जरी तो कोई ऐसे करवाना नहीं चाहता कि जब तक जरूरत ना हो, मगर अगर जरूरी है, आपका डॉक्टर आपको सलाह दे रहा है और आप कहीं सेकंड ओपिनियन भी ले रहे हैं और आखिरकार आपने डिसाइड कर लिया है आपने और आपके डॉक्टर ने कि सर्जरी चाहिए, तो आई विल सजेस्ट कि नी रिप्लेसमेंट इज अ वेरी गुड ऑप्शन. जो ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग सर्जरी है दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड वे, बट जो रोबोटिक है उसका जो मेन फंक्शन है वो हमें एक प्रिसिशन देता है, बिकॉज हेयर वी आर डीलिंग विद इन फ्यू मिलीमीटर्स. 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर ऊपर नीचे होने से, थोड़ा सा एंगल होने से हमारी जो अल्टीमेट आउटकम है उसमें थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है. तो रोबोटिक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो हमारे जो बोन कट्स हैं जिसपे अल्टीमेटली हमें इम्प्लांट डालना है, वो प्रिसीजन के साथ बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही प्रिसाइज होते हैं, और उसकी वजह से वी एक्सपेक्ट कि रिजल्ट भी हमारे उतने ही अच्छे आए. जब हम यहाँ पे रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में, उसके बाद हम अक्सर उनको सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे हम उनको जरूर चला देते हैं, फुल वेट बेरिंग अलाउ करते हैं, और मरीजों में हमने पाया है कि थोड़ा सा बेहतर है. वैसे हमारे नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट करते हैं उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट है, मगर रोबोटिक से हमने अभी थोड़े से हमने बेहतर रिजल्ट ऑब्जर्व किए हैं.
1: यानी किस एज में सर ये लगता है आप लोगों को कि अब ये टोटल नी रिप्लेसमेंट करवा लाना चाहिए, क्योंकि एक डर रहता है कि वो मेरे अपने घुटने नहीं है, आपने चेंज किया उनको, और उनकी लाइफ कितनी रहती है अगर घुटना है, तो कितने साल तक हमें लगे कि अब हम सेफ हैं इस घुटने के साथ.

0: क्योंकि ये कंफ्यूजन लोगों में हमेशा रहता है और एक डर तो है ही कि मेरी अपनी ओरिजिनल चीज अब नहीं रही।
1: अपने शरीर के हिस्से के साथ लगाव होना तो बिल्कुल लाजमी है, बट एज ऑफ द पेशेंट जो है वो कोई क्राइटेरिया नहीं है सर्जरी का। क्राइटेरिया होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कितनी प्रॉब्लम है। वही एक्सरे में हो सकता है आपको शायद कम प्रॉब्लम है और आपकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ डेली है, जो आपका काम चल सकता है, तो आप शायद ना करवाएं। मगर अगर आपको उसी घुटने में उतने ही खराब होने के बाद आपको बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है, तो फिर हम उनको रिकमेंड करते हैं कि सर्जरी करें। सर्जरी दे आर क्वाइट सक्सेसफुल, बहुत हाई सक्सेस रेट है और आमतौर पर इनकी लाइफ जो है अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 साल तक चलती है।
0: 20 से 25 साल वो अपना रोजमर्रा का काम कर सकते हैं और उठने बैठने में भी तकलीफ नहीं होती।
1: देखिए आमतौर पर जो ये पाया गया है कि जितने बुरी दर्द वगैरह जो उनका होता है उसमें वो काफी आराम पाते हैं और नॉर्मल चलने में, यहां तक कि पेशेंट जो अभी मिले थे कुछ दौड़ लगाने में भी वो कर सकते हैं। इसके अलावा लेकिन हम कुछ उनको फिर भी प्रिकॉशंस देते हैं कि आमतौर पर वो फिर भी ऑपरेशन के बाद भी इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल ना करके वेस्टर्न का करें, उससे थोड़ा सा क्योंकि उसकी लॉन्जेविटी और ज्यादा बढ़ती है। और इसके अलावा कुछ फिजियोथेरेपी वगैरह होती है जो कि हम डे वन से स्टार्ट कर देते हैं और पेशेंट को हम नेक्स्ट डे से ही चला देते हैं, इनिशियली थोड़ा विद सपोर्ट और उसके बाद ग्रेजुअली वी वीन इट ऑफ, तो पेशेंट जो है वो काफी हाई सेटिस्फेक्ट्री रेट के
0: साथ। लोग सब बात करें कि आजकल के बच्चों में भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ये इश्यूज बोन रिलेटेड आ रहे हैं, खासकर छोटे बच्चे जो फोन को लगातार घंटों से देखते हैं तो उनकी गर्दन में एकदम दर्द होता है और वो दर्द के लिए जाते हैं तो उनको पता चलता है कि सर्वाइकल से और यहाँ पे भी कुछ आर्थराइटिस का इश्यू है। ऐसा क्या करें कि सर अब बच्चे सुरक्षित रहें, या हमारा लैपटॉप पे आजकल ऑनलाइन वर्क चल रहा है घंटों तक, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे डॉक्टर साहब?
1: जैसे आपने बताया कि लैपटॉप या मोबाइल है, ये तो एक तरह से एक लाइफस्टाइल डिजीज है, तो लाइफस्टाइल डिजीज नीड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो उसके लिए आई विल सजेस्ट कि एक टर्म है अर्गोनॉमिक्स, तो वी हैव टू जो हमारा फर्नीचर वगैरह है या कोई लैपटॉप है उसको एक प्रॉपर हाइट पर रखें, जो नेक की पोजीशन है वो उसको मेंटेन करें। उसके अलावा ऑफ कोर्स जितना हो सके कम से कम इस्तेमाल करें। मेनी पीपल आर दे आर डूइंग डेस्क जॉब, तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप एवरी वन आवर एटलीस्ट एक बार उठें, एक इवन इफ अ फ्यू सेकेंड्स और अ मिनट आप उसको ब्रेक कर दें, जो मसल स्पाज्म जो डेवलप हो रहा है। तो इवन इफ यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग पेन राइट नाउ, आप एवरी मतलब 8 घंटे की ड्यूटी आप 8 बार उठे, 2-3 बार आप कभी वॉशरूम चलेगा या आप एक राउंड लगा लिया जस्ट फॉर अ फ्यू सेकंड, दैट जस्ट ब्रेक्स द एक विशियस साइकिल को ब्रेक कर देता है, तो वो जो स्पाज्म हो रहा है उसको इम्प्रूव कर देंगे, सो ग्रेजुअली जो आपका ये जो प्रॉब्लम्स है इसमें काफी निदान हो जाता है।
0: डॉक्टर साहब डाइट की बात करें, क्या कुछ स्पेशल डाइट भी आप रेकमेंड करेंगे हमारे श्रोताओं को कि क्या खास खाएं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी से हमारा अर्ली स्टेज में ही दूरी बनी रहे?
1: हमारे घर में जो खाना बनता है वही सबसे बढ़िया खाना होता है, उसी को अपनाएं। हर तरह का जो बैलेंस्ड फूड है उसको खाने की कोशिश करें और सप्लीमेंट्स के ऊपर जो निर्भरता है उससे बचें, खाने में अपने मिल्क प्रोडक्ट्स बढ़ाएं। उसके अलावा मैं ये कहूंगा कि खाना भी बहुत ही बैलेंस्ड होना चाहिए और साथ में थोड़ा सा वेट रिडक्शन, जो कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, खाने में चीनी और मैदा इन तरह की चीजों से बचें, तला हुआ खाना खाने से थोड़ा सा बचें और एक नियमित व्यायाम, बैलेंस्ड खाना और नियमित व्यायाम, इन दो चीजों को दीज आर यू कैन से इंडिस्पेंसिबल, इनके बिना गुजारा नहीं है। फिर आप जितनी भी दवाई खा लें, जितनी भी सर्जरी करा लें, आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा जब तक कि आप खाने में प्रॉपर रहेंगे और वेट रिडक्शन करेंगे, एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे, तो आपको कभी भी हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: सर अक्सर बात की जाती है पीआरपी और स्टेम सेल्स से रिलेटेड कि कितना सक्सेसफुल है और कितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें।
1: पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, इसमें हम पेशेंट का ब्लड लेके उसको फर्दर प्रोसेस करके वापस उसमें ज्वाइन में, एक तरह का प्रोसीजर है जिसमें हम बॉडी में थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसमें हम उसकी जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को हम एक तरह से इंस्टिगेट करते हैं कि वो फर्दर नेचुरल हीलिंग की तरफ जाए, और ये सब एक रिसर्च का विषय है। उसके अलावा स्टेम सेल में भी हम इसी स्टेम सेल जो है ना वो मेनली या तो बोन मैरो से या फिर फैट इज एक्चुअली द बेस्ट सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स, तो उनको लेके फर्दर प्रोसेस करके और फिर भी री इंजेक्टेड एंड बिकॉज दे हैव द मोर पोटेंशियल टू फर्दर डेवलप एंड वी एक्सपेक्ट देम टू ग्रो, सो दैट इज द मेन रीजन जैसे हम ये पीआरपी और स्टेम सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि जो काम हमारा एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से या फिर अच्छे खान पान से हो सकता है उसका हम मुकाबला नहीं कर सकते।
0: कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए?
1: मैसेज तो मैं यही रहूंगा, ऐसा करें कि आपका दिनचर्या जो है वो इस तरह से हो कि आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप करें, चाहे सैर करें शाम को या सुबह, जिससे कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें और आपके जोड़ भी बिल्कुल ही अच्छे रहे।
0: डॉक्टर साहब आपने इतना अच्छा संदेश दिया और इसी संदेश के साथ एक और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आपका कोई प्यारा सा सॉन्ग जो आप चाहें कि वो प्ले करें आज।
1: एक गाना जो मुझे याद आ रहा है पुराना देवानंद जी का, किशोर कुमार ने गाया है, हम है राही प्यार के हमसे कुछ ना बोलिए।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुखविंदर सिंह बसरण वशिष्ठ विशेषज्ञ एवं एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली से नीलू सूरी की बातचीत। और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस की। जी हाँ, जिसे हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य लोगों में आपदाओं के जोखिम को कम करने के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, सुरक्षित और लचीले समाज के निर्माण को प्रोत्साहित करना है। प्राकृतिक आपदाओं को हमेशा रुक पाना संभव नहीं होता दोस्तों, लेकिन बेहतर तैयारी, जागरूकता और सही योजना के जरिए नुकसान को कम किया जा सकता है। परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी होनी चाहिए कि आपात स्थिति में सुरक्षित स्थान कौन सा है और एक दूसरे के कैसे संपर्क करना है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण की शुरुआत हम अपने घर से ही कर सकते हैं। घर में प्राथमिक उपचार की किट रखें, जरूरी दवाइयां, टॉर्च, पानी और कुछ जरूरी सामान तैयार रखें। स्कूल, कार्यालय और समुदाय में नियमित मॉक ड्रिल और आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण भी बहुत जरूरी है। खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों की सुरक्षा के लिए पहले से योजना बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। याद रखिए, आपदा के समय घबराहट नहीं, तैयारी काम आती है। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आइए संकल्प लें कि हम खुद भी जागरूक बनेंगे और अपने परिवार, दोस्तों और समुदायों को भी यानी कि आपदा के बचाव के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि एक सुरक्षित समाज की शुरुआत होती है सही जानकारी, सतर्कता और समय पर तैयारी से। सुरक्षित रहिए, सजग रहिए और जरूरत के समय एक दूसरे का साथ दीजिए।

और दोस्तों अब बात करते हैं कुछ खुद के लिए सोलो ट्रैवलिंग क्यों है जरूरी। कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ में हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है खुद के साथ कुछ वक्त बिताने की, और इसके लिए सोलो ट्रैवलिंग यानी अकेले सफर से बेहतर कुछ नहीं। तो अकेले सफर करने का मतलब सिर्फ किसी नई जगह को देखना नहीं बल्कि खुद को एक नए तरीके से जानना भी है। जब हम अकेले यात्रा करते हैं तो फैसले खुद लेते हैं और रास्ते खुद चुनते हैं और छोटी बड़ी चुनौतियों का सामना भी खुद करते हैं। और कभी किसी अनजान शहर की गलियों में घूमना, किसी शांत पहाड़ पर बैठना या समुद्र की लहरों पर निहारना, ये पल मन को सुकून देते हैं। तो आइए, सबसे खूबसूरत बात अकेले सफर में हमें अपनी आवाज सुनाई देती है। हम समझ पाते हैं कि वास्तव में हमारी पसंद क्या है और पसंद क्या है, हमारी खुशियां किन किन छोटी छोटी चीजों से छिपी हैं और अपने जीवन में हम क्या बदलाव चाहते हैं। तो अगर आपको मौका मिले जिंदगी में कम से कम एक बार अकेले सफर पर जरूर जाइए। जरूरी नहीं कि सफर बहुत दूर का हो, पास के किसी खूबसूरत शहर का और जगह का भी हो सकता है और इसकी शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि कभी कभी मंजिलों से ज्यादा खूबसूरत होता है खुद से मिलने का सफर। तो मुस्कुराइए और निकल पड़िए कोई ऐसी दुनिया देखने के लिए, शायद इस सफर में आप खुद को भी थोड़ा सा और करीब जान पाएंगे।

और साथ में हम ये भी कहेंगे कि हंसे और खुशी के साथ अपने जीवन को कैसे गुजारें, क्योंकि जितना हम इसे बाहर खोजने की कोशिश करते हैं इसके मिलने की संभावना उतनी कम हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर ही होती है। बस इसी वक्त से हम प्रसन्नचित होने की कोशिश करें या इसे कहीं ढूंढने जाएं, तो ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जो खुशी से जीते हैं। अगर हम भी हंसते हुए जीना चाहते हैं तो बस हमें प्रसन्न रहना होगा और अपने मनपसंद काम को करना होगा। और ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि खुश कैसे रहा जाए, क्योंकि जब हम छोटी सी खुशी में ही अपनी पसंद

और दोस्तों हम ये कहना चाहते हैं कि नवरात्र हमें केवल पूजा पाठ का संदेश नहीं देता बल्कि हमें अपने भीतर की शक्ति और पहचानने की प्रेरणा भी देता है। तो माँ दुर्गा शक्ति साहस और नारी सम्मान का प्रतीक है और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपसे होगी जल्दी ही अगली मुलाकात, तब तक के लिए सिमरन कौर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आए ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत में स्टार्टअप का काफी विस्तार हुआ है।
1: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक

0: स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत का आर्थिक विकास एक मजबूत नींव पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
2: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। ये एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
1: आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति पर गृहमंत्री ने इस दिशा में सामूहिक संकल्प का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी आतंकी नेटवर्क को पनाह, भर्ती, प्रशिक्षण, धन या पड़ोसी देशों के विरुद्ध गतिविधियां चलाने के लिए क्षेत्र में कोई जगह न मिले। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया है। ये लोग राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। पूर्वी दिल्ली में 3 नए प्रदर्शन स्थल रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान सूचित किए गए हैं। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत भी आज अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 554 अंक बढ़कर 72,479 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 176 अंक की वृद्धि के साथ 22,540 पर पहुंचा। नवरात्रि का आज 3रा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये दिन साहस, शांति और दिव्य शक्ति की प्रतीक देवी चंद्रघंटा को समर्पित है। उन्होंने सभी के लिए सुख, समृद्धि और सफलता की कामना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said the centre has embodied the principle of power to empower in its governance approach and work culture. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi, Mr. Modi said India's progress is rooted in collective growth and shared opportunities. Mr. Modi stated that digital power has opened up greater opportunities for India.
0: Bharat, mother of democracy hai. Bharat mein 100 se upar bhashaein hain. Kareeb 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं, 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं, हमारे यहाँ अलग अलग

0: मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर.
1: The Prime Minister said India's economic growth is taking place on a strong foundation amidst global uncertainty. He said the GDP growth stood at 7.8% in the first quarter of this financial year. Mr. Modi highlighted that India had lifted 25 crore people out of poverty over the past decade.
0: Power ke purpose par jo focus hai, yahi soch governance mein bhi zaruri hai. Sarkar ke paas authority hai. लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो. और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है. इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है.
1: India is hosting the first Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation, BIMSTEC Home Ministers meeting in New Delhi.

एक ही नाम गूंज रहा था और वो नाम था खिलाड़ी। अब्बास मस्तान के निर्देशन में बनी ये फिल्म जिसने बॉलीवुड को उसका एक्शन स्टार दिया। और आज के इस एपिसोड में एक ही फिल्म से के इस सफर में हम अक्षय कुमार, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी और सबीहा स्टारर इस सस्पेंस थ्रिलर की मेकिंग के बारे में, इसके गीतों के बारे में और इसमें किए गए दमदार अभिनय के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, फिल्म मेकिंग की अगर हम बात करें तो 90 के दशक की शुरुआत में हिंदी सिनेमा में रोमांटिक फिल्मों का बोलबाला था। ऐसे दौर में दो भाइयों की जोड़ी अब्बास और मस्तान, जिन्होंने थ्रिलर जॉनर के साथ एक बड़ा दांव खेला था इस फिल्म के जरिए। फिल्म खिलाड़ी की कहानी कॉलेज के चार दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है, जो मजाक मजाक में एक नकली किडनैपिंग की योजना बनाते हैं, लेकिन उनका मजाक तब खौफनाक हकीकत बन जाता है जब सच में मर्डर हो जाता है। अब्बास मस्तान का निर्देशन इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी रही और फिल्म का पहला हाफ बहुत हल्का, मस्ती भरा और कॉलेज लाइफ से भरपूर दिखाई दिया, जबकि दूसरे हाफ में दर्शकों को उनकी सीटों से बांधे रखने वाला समा बंधा रहा। स्क्रीन प्ले इतना दमदार कि दर्शक हर अगले पल के लिए सोचने पे मजबूर हो जाते थे कि कातिल कौन है। उस दौर के हिसाब से सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग ने सस्पेंस को बहुत अच्छे से दर्शाया था इस फिल्म के जरिए, और इस वजह से ये फिल्म एक क्लासिक फिल्म भी, कल्ट क्लासिक फिल्म भी कहलाती है।

मनीषा के साथ एक ही फिल्म से का ये सफर जारी है दोस्तों। कार्यक्रम से जुड़ी आपकी क्रिया और प्रतिक्रिया के लिए आप ipradiodelhi@gmail.com पर अपने संदेश हम तक भेजिए। और हमें बस आपसे यही कहना है, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के इस सफर में, एक ही फिल्म से कार्यक्रम के इस सफर में हम आपके लिए लेकर आए हैं अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म खिलाड़ी की बातें, फिल्म की मेकिंग और उसकी गीतों के बारे में कर रहे हैं बात। और अब रुख करते हैं फिल्म के मजबूत उस पहलू के बारे में जहां है फिल्म का अभिनय। फिल्म खिलाड़ी अक्षय कुमार के करियर का वो टर्निंग पॉइंट रही जिसने उन्हें खिलाड़ी कुमार का टैग दिया दोस्तों। और राज के किरदार में अक्षय ने कमाल का अभिनय किया, आपको याद भी होगा अगर आपने ये फिल्म देखी होगी। पहले हाफ में उनका चुलबुला अंदाज, कॉलेज बॉय की इमेज और दूसरे हाफ में उनका गंभीर, डरा हुआ और फिर अपने दोस्तों को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देने वाला रूप वाकई प्रभावशाली रहा। और सबसे खास इस फिल्म में अक्षय कुमार ने बिना किसी बॉडी डबल के खुद ही सारे खतरनाक स्टंट्स किए जिसने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए। फिल्म की अभिनेत्री आयशा जुल्का यानी नीलम के किरदार की बात करें तो इस फिल्म में आयशा बेहद मासूम और खूबसूरत लगी। अक्षय के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी नेचुरल थी कि उस दौर में इस जोड़ी को हर कोई पसंद करने लगा। आयशा ने न सिर्फ फिल्म के गानों में अपने चुलबुलाहट से दिल जीता बल्कि इमोशनल और थ्रिलिंग सीन्स में भी उनका डर और लाचारी पर्दे पर बिल्कुल असली लगने लगी। अन्य किरदारों में दीपक तिजोरी, बोनी के किरदार में अक्षय के दोस्त के रूप में बहुत ही ईमानदार परफॉर्मेंस देने वाले रहे। जॉनी लीवर की कॉमेडी ने फिल्म के तनाव को कम किया और शक्ति कपूर और अनंत महादेवन ने अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय किया। अभिनय के मामले में हर कलाकार इस फिल्म में अपनी जगह बिल्कुल फिट बना रहा।

साथियों, एक ही फिल्म से के इस सफर में आज हम बात कर रहे हैं 1992 की फिल्म खिलाड़ी की। और इस फिल्म को चाहने वाले भी बहुत सारे दर्शक रहे, जिनमें से हमारे कई श्रोता शामिल।

हैं और उनके संदेश हमारे पास आ चुके हैं, जिनमें सुदर्शन मुखी हैं और इनके साथ अनिता सिमरन मुखी जुड़ी हुई हैं शांतिनगर सोनीपत से, और उन्हें जानकारी बहुत अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। हमारे कार्यक्रम को सुनकर पसंद कर रहे हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोरा, जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, दिशानी और निमित आहूजा, और गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, उन्हें भी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी हैं और ये जानकारी उन्हें अच्छी लग रही, ये पसंद की फिल्म उनकी रही है। वैसे ही हमारे पास दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा का भी संदेश है, वो भी हमारे कार्यक्रम को बहुत गौर से सुन रहे हैं। फाजिलका पंजाब खेड़ा से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाडी और शालिनी और तिवानशी खेड़ा जुड़े हुए हैं और कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और हमारे साथ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामोरिया भी जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, डब्बू सम्राट, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना भी जुड़े हुए हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगनिया, नमन ढिंगनिया, अपार ढिंगनिया है। उसी तरह बिहारी कॉलोनी दिल्ली से आपका नाम दोबारा आ चुका है, हमारे साथी जुड़े हुए हैं। ऊपरकोट बुलंदशहर से एमएस अब्बासी और उनका पूरा अब्बासी परिवार जुड़ा हुआ है, बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत और बेबी आराध्या जुड़े हुए हैं। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से कार्यक्रम सुन रहे हैं, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार जुड़े हुए हैं और कार्यक्रम को वो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, उन्हें जानकारी अच्छी लग रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1992 की फिल्म जो अक्षय कुमार की वो फिल्म रही जहां से वो एक्शन हीरो के रूप में जाने जाने लगे और खिलाड़ी इस फिल्म में उनके अभिनय को देखकर सभी चकाचौंध हो गए, सभी को ऐसा लगा कि अक्षय कुमार के रूप में एक नया एक्शन हीरो उन्हें मिल चुका है। दोस्तों, खिलाड़ी सिर्फ सस्पेंस के लिए नहीं बल्कि अपने एवरग्रीन म्यूजिक के लिए भी मशहूर रही और इस फिल्म का संगीत तैयार किया था संगीतकार जोड़ी जतिन ललित ने, और जानते हैं इस एल्बम ने उन्हें बॉलीवुड के टॉप संगीतकारों की कतार में भी लाकर खड़ा कर दिया था। फिल्म का हर एक गाना अपने आप में एक कहानी कहता है दोस्तों। अलका याग्निक, उदित नारायण, कुमार सानू और अभिजीत भट्टाचार्य की आवाजों ने फिल्म के गीतों में जान फूंकी है और यही वजह है कि आज 30 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी फिल्म के गाने उतने ही फ्रेश लगते हैं।

तो दोस्तों 1992 की खिलाड़ी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि बॉलीवुड में सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों का बेंचमार्क कही जा सकती है। उम्दा निर्देशन, अक्षय कुमार की बेजोड़ एनर्जी, आयशा जुल्का का शानदार अभिनय और जतिन ललित का सुरीला संगीत, इस फिल्म में वो सब कुछ था जो एक ब्लॉकबस्टर के लिए चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगले सफर में फिर मिलने के वादे के साथ आपकी दोस्त आपकी होस्ट मनीषा को इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। छोड़े जा रही हूँ आपको इस कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली विच ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम नूं संबोधन किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने शासन दृष्टिकोण विच शक्ति तों शक्तिकरण के सिद्धांत नूं अपनाया है। गृहमंत्री अमित शाह ने दहशतगर्दी प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस नीति नूं दोहरांदिया इसके मुकाबले लई समूहक संकल्प का सद्दा दिता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड IMF ने मौजूदा ते अगले वित्तीय साल लई भारत की GDP विकास दर का अनुमान वधा के 7% कर दिता है। दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के आगुआ सौरभ दास से आशुतोष शरंका हिरासत में लिया है। पंजाब के मानसा में आज नशा विरोधी कारकुन परविंदर सिंह चोटा की गोली मार के हत्या कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने अपने शासन दृष्टिकोण और कार्य सभ्याचार विच शक्ति तों शक्तिकरण के सिद्धांत नूं अपनाया है। नवी दिल्ली विच ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम नूं संबोधन करदिआं श्री मोदी ने कहा कि भारत की तरक्की समूहक विकास और सांझे मौकिआं ते टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि ताकत सिर्फ कुछ लोगों नूं अगे वधाउण दी योगता नहीं सगों यह दूजिआं नूं समर्थ बनाउण दी योगता भी है।
2: सिर्फ कुछ लोगों को आगे बढ़ाएगी या करोड़ों लोगों के लिए नए अवसर बढ़ाएगी? क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट।

0: पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर्स सक्सीड। और इसलिए आज मैं यहां जिस विजन के साथ आया हूं वो है पावर टू एम्पावर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वव्यापी अनिश्चितता के बावजूद भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींह ते टिकया होया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्तीय साल की पहली तिमाही में जीडीपी वाधा दर 7.8% रही है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर तो वध है ते बैंकिंग प्रणाली दहाकों में अपनी सब तो मजबूत स्थिति में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रैस तेज रफ्तार नाल अगे वध रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत की तरक्की सारे वधन सारे इकट्ठे लिया की कहानी है। उन्होंने कहा कि जदों भी दुनिया एक मजबूत थम की लोड़ हुंदी है तो भारत अपनी जिम्मेवारी समझते हुए मदद का हथ वधाउंदा है। श्री मोदी ने कहा कि अज भारत 2000 तो वध ग्लोबल कंपीटेंस सेंटर ने जो दुनिया भर दंपनियां सेवावां प्रदान करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में तकनोलॉजी डाटा ज्ञान और नवीनता शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का निरंतर यत्न यह यकीनी बनाना है कि भारत की समर्थावां दूजे देशों लई भी मौकों के नवे दरवाजे खोलन। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है।
0: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले दहाके 25 करोड़ लोगों को गरीबी तो बाहर कढ़िया है। भारत नवी दिल्ली में बहुपक्षी तकनीकी ते आर्थिक सहयोग लई बंगाल की खाड़ी खेत्र के पहलकदमी बिमस्टेक दे गृह मंत्रियों की पहली मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह इतिहासिक मीटिंग दहशतगर्दी संगठित अपराधा नशीले पदार्थां तस्करी गैर कानूनी वित्तीय प्रवाह और साइबर खतरों का मुकाबला करने के सांझे संकल्प उजागर करती है। उन्होंने कहा कि मैंबर देश आपसी तालमेल राही एक सुरक्षित और मजबूत बिमस्टेक खेत्र बनाने लई वचनबद्ध ने। इस मौके बोलदे गृह मंत्री ने कहा कि बिमस्टेक खेतरी एकता आर्थिक सहयोग और समूहक सुरक्षा लिए एक महत्वपूर्ण मंच वजो उभरिया है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा शांति और मनुखी भलाई लिए वचनबद्ध रहा है जो वसुदैव कुटुंबकम के मंत्र से आधारित है। श्री शाह ने कहा कि भारत सारे देशों की प्रभुसत्ता और खेतरी अखंडता का सत्कार करता है और विवादों के शांतिपूर्ण हल का समर्थन करता है। दहशतगर्दी प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहरांदे गृहमंत्री ने कहा कि इस दिशा समूहक संकल्प का सद्दा दिता जाना चाहिए।
2: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। ये एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
1: अने खुफिया ते कानून लागू करने वाली एजेंसियां वित्तीय निगरानी ते सरहदी प्रबंधन विचकार मजबूत सहयोग ते तालमेल की लोड़ ते जोर दिता। एक खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्सटेंडल है @AIR RNU जलंधर। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड IMF ने मौजूदा ते अगले वित्तीय साल लई भारत दी GDP विकास दर दा अनुमान वधा के 7% कर दिता है। बैंकॉक विच IMF दी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड दी सालाना मीटिंग विच अक्तूबर 2026 लई विश्व आर्थिक दृष्टिकोण च महत्वपूर्ण सोध कीती गई है। IMF ने जुलाई विच विकास दर के अनुमान मौजूदा वित्तीय साल 6.4% ते आने वाले वित्तीय साल 6.7% रहने की पेशीनगोई की सी। बहुत ही अस्थिर विश्व आर्थिक हालात के बावजूद कई ढांचागत ताकत भारत की आर्थिकता मजबूती दे रही ने। इन्होंने मजबूत घरेलू मंग, सेवावां की मजबूत गतिविधि, ढांचागत सुधार से जनसंख्यकी शामिल ने। दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के आगुआ सौरभ दास ते आशुतोष रंका नूं हिरासत विच लै लिया है। ए राष्ट्रीय राजधानी विच जंतर मंतर विच दाखल होने की कोशिश कर रहे सन। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर नूं निर्धारित विरोध प्रदर्शन स्थानों की सूची चो हटा दिता सी। 3 नवे विरोध प्रदर्शन स्थान रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और CBD मैदान नोटिफाई

0: को सॉल्यूशन में बदलना, यह अपने आप में एक बड़ी क्षमता है। लेकिन जब यह अवसर समाज के अधिक से अधिक लोगों को मिलता है तो शक्ति का संतुलन बनता है और इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भारत की स्टार्टअप जर्नी इसी बदलाव का उदाहरण है।
1: वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत की यह मुसलसल कोशिश है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि भारत की सलाहियतें दीगर मुल्कों के लिए भी मौके के नए दरवाजे खोलें। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि भारत ने पिछली दहाई में 25 करोड़ लोगों को गरीबी की सतह से बाहर निकाला है।
0: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो। और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: भारत आज नई दिल्ली में कसीर रुखी तकनीकी और इक्तिसादी ताउन के प्लेटफॉर्म यानी बिम्स्टेक के वज़राए दाखिला की पहली मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। ये तारीखी मीटिंग दहशतगर्दी, मुनज्जम जरायम, नारकोटिक्स, इंतहा पसंदी, गैर कानूनी तिजारत और साइबर खतरात से निमटने के तई मुश्तरक अज़्म की अलामत है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि इलाकाई सालमियत, इक्तिसादी ताउन और मजमूई सलामती के लिए बिम्स्टेक एक अहम प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के उसूल के तहत हमेशा अमन और इंसानी फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म रहा है। भारत की दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने की पॉलिसी की तौसीक करते हुए वजीर दाखला ने इज्तिमाई अज़्म के लिए कहा, जिससे इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि खित्ते में पनाह भर्ती करने, तरबियत देने, फंडिंग करने और पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ सरगर्मियों की खातिर दहशतगर्द अपने नेटवर्क के लिए जगह हासिल न कर सकें।
2: आतंकवादियों, उनके सहायकों, आपराधिक नेटवर्क, वित्तीय चैनल और सीमा पार गतिविधियों पर सत्यापित तथा कार्रवाई योग्य सूचना का समय पर आदान प्रदान हमारी सामूहिक सुरक्षा को मजबूत कर सकता है।
1: दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर बात करते हुए वजीर मौसूफ ने नोडल एजेंसियों के जरिए इंटेलिजेंस के तबादले और दहशतगर्दी को फंडिंग करने और मुनज्जम जराइम के खिलाफ बेहतर ताउन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सभी बिम्स्टेक मेंबर मुल्कों से ताउन को मजबूत करने को कहा, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी मुजरिम या दहशतगर्द कानून की गिरफ्त से बाहर न रह सके, भले ही वो कहीं भी छुपा हुआ हो। बिम्स्टेक एक इलाकाई तंजीम है जिसका कयाम साल 1997 में अमल में आया था। खलीज बंगाल के अतराफ के मुल्कों और इसके पड़ोसी मुल्कों के दरमियान तकनीकी और इकतसादी ताउन को फरोग देना इसका मकसद है। बिम्स्टेक में 7 मेंबर ममालिक शामिल हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड हैं। बैनुल अक्वामी मालियाती फंड IMF ने साल 2026-27 के लिए भारत की मजमूई घरेलू पैदावार GDP की शरह नमू के तखमीने को 6.4 से बढ़ाकर 7% कर दिया है। IMF ने अपनी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कहा कि तखमीने में ये तजजिया तवक्को से ज्यादा नमू की बुनियाद पर किया गया है। उसने कहा कि भारत तरक्की के तजजियों की बुनियाद पर मुमताज मुल्क बनकर उभर रहा है, जिससे मुस्तहकम और ताकतवर तरक्की की निशानदेही होती है। वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा ने आज कहा कि शवाहिद पर मबनी पॉलिसी बनाने और खासतौर से मसनूई जहानत के दौर में डेटा को जमा करना और इसका तजजिया करना बहुत जरूरी है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आदाद और शुमार की वजारत और प्रोग्राम के निफाज से मुतालिक कॉन्क्लेव में खिताब करते हुए जनाब मिश्रा ने यह बात कही। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। आज अपनी खसूसी सीरीज के तहत हम इस बात का तज़किरा कर रहे हैं कि भारत के शुमाल मशरिकी खित्ते में इस नज़रिए से किस तरह अमन इस्तेहकाम और तरक्की को अमली शक्ल दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मरकजी हुकूमत ने साल 2014 से अपनी मशरिक नवाज पॉलिसी के तहत शिमाल मशरिकी खित्ते को स्ट्रेटजिक गेटवे के तौर पर पोजीशन दी है। वजारत दाखिला के मुताबिक खित्ते में शोरश पसंदी से मुतालिक वाकयात में 70% से ज्यादा की कमी आई है। सलामती की सूरत हाल में यह बेहतरी मुसल्लह ग्रुपों के साथ 12 से ज्यादा अमन समझौतों का नतीजा है। इन ग्रुपों में बोडो, कड़वी और उल्फा के

0: Announcing this vision, Mr. Modi stated that digital power has opened up greater opportunities for India.
1: Bharat, mother of democracy hai. Bharat mein 100 se upar bhashaein hain. Kareeb 80,000 registered newspaper aur publications hain. 1,000 se zyada satellite TV channels hain. Hamare yahan alag-alag muddon par khulkar behas hoti hai. अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर.
0: द प्राइम मिनिस्टर सेड व्हेनेवर द वर्ल्ड नीड्स अ स्टेडी पिलर इंडिया एक्सटेंड्स इट्स हैंड इन सपोर्ट रिकॉग्नाइजिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. मिस्टर मोदी सेड टुडे इंडिया इज होम टू मोर देन 2,000 ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर्स दैट आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड. Mr. Modi said India is the mother of democracy and it has over 100 languages, around 80,000 registered newspapers and publications, and more than 1,000 satellite television channels. Mr. Modi highlighted that India had lifted 25 crore people out of poverty over the past decade.
1: Power ke purpose par jo focus hai, yahi soch governance mein bhi zaruri hai. Sarkar ke paas authority hai. लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो. और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है. इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है.
0: The Prime Minister said India's startup ecosystem has expanded significantly since 2014, with the number of startups crossing 2,50,000.
1: भारत में कुछ 100 startups ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई. करीब आधे startups छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं. 45% से अधिक startups में कम एक महिला director या partner है. यानी innovation के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं.
0: India is hosting the first Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC Home Ministers Meeting in New Delhi. This historic meeting highlights the collective commitment to combating terrorism, transnational organized crime, narcotics, radicalization, human trafficking, illicit financial flows and cyber threats. Speaking on the occasion, Home Minister Amit Shah said BIMSTEC has emerged as an important platform for regional integration, economic cooperation and collective security. He said India has always been committed to peace and human welfare, guided by the principle of Vasudhaiva Kutumbakam. Reaffirming India's policy of zero tolerance towards terrorism, the Home Minister called for a collective commitment to ensure that no terrorist network finds space within the region for shelter, recruitment, training, financing or activities against neighboring countries.
2: आतंकवादियों, उनके सहायकों, आपराधिक नेटवर्क, वित्तीय चैनल और सीमा पार गतिविधियों पर
3: टेररिस्ट, देयर एसोसिएट्स, क्रिमिनल नेटवर्क्स, फाइनेंशियल चैनल्स एंड क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज, द टाइमली एक्सचेंज ऑफ वेरीफाइड एंड एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन ऑन दीज कैन स्ट्रेंथन आवर कलेक्टिव सिक्योरिटी. द मिसयूज ऑफ इनफॉर्मल फाइनेंशियल ट्रांसफर, ट्रेड बेस्ड चैनल्स एंड क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल नेटवर्क्स further complicates the flow of illicit proceeds. In this context, the exchange of financial intelligence and investigative expertise can further help us.
2: हमें और मदद रूप हो सकता है.
0: UPI merchant discount rate MDR on select person-to-merchant transactions will be implemented after Diwali. In a social media post, National Payments Corporation of India said UPI and Services Steering Committee today decided that keeping in mind the festive season, MDR on select person-to-merchant UPI transactions will be implemented immediately post Diwali. It said the date will be notified separately. All person-to-person UPI transactions will remain free regardless of amount. The MDR charges will apply only to person-to-merchant transactions exceeding 2,000 rupees. Around 96% of person-to-merchant UPI transactions will remain unaffected. Small merchants, including street vendors receiving up to 1 lakh rupees per month through UPI QR codes under the person-to-person merchant category, will continue to enjoy zero MDR.

0: rescued 321 people, including 12 foreigners, today after a pre-dawn landslide in Gorkha district, about 100 kilometers west of Kathmandu. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over the Andaman and Nicobar Islands today, IMD said. Heavy rainfall and thunderstorm accompanied by hailstorm are also likely to prevail over Jammu and Kashmir and Ladakh till tomorrow. Indian opener Shefali Verma was named the ICC Women's Player of the Month winner for September 2026 following incredible title-winning outings in the Women's Asia Cup and the Asian Games with the bat and clutch contributions in high-stakes matches. On the other hand, Indian captain Shubman Gill was named ICC Men's Player of the Month for a record fifth time following his outstanding performance in the one-day international series against the West Indies. Denmark Open badminton tournament kicks off in Odense today. PV Sindhu will take on Yvonne Lee of Germany in the women's singles round of 32 match this evening, while Tanvi Sharma will be up against Natsuki Nadera of Japan. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India's economic growth is taking place on a strong foundation amidst global uncertainty, addresses Bloomberg New Economy Forum in New Delhi. Home Minister Amit Shah hails BIMSTEC as an important platform for regional integration, economic cooperation and collective security. UPI merchant discount rate on select person-to-merchant transactions to be implemented after Diwali. IMF raises India's GDP growth forecast to 7% for 2026-27. Canadian Foreign Minister Anita Anand to arrive on a two-day visit to India from today, and Shefali Verma and Shubman Gill named ICC Women's and Men's Player of the Month for September 2026. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से दो दिन के भारत दौरे पर, और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है।
2: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है, और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है।
2: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
1: श्री मोदी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही। उन्होंने कहा कि आज भारत

0: का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो। और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत के नवाचारों का काफी विस्तार हुआ है।
1: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के कृपया इसे फिर से सुन लें। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया।
2: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। यह एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी की समस्या मानवाधिकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
2: मानव तस्करी भी हमारे साझा सुरक्षा और मानव अधिकारों के समक्ष गंभीर चुनौती है। पीड़ितों की पहचान, बचाव, सहायता, पुनर्वसन और सुरक्षित वापसी में सहयोग हमारे सामूहिक प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहना चाहिए।
0: श्री शाह ने खुफिया जानकारी, कानून प्रवर्तन, वित्तीय निगरानी और सीमा प्रबंधन एजेंसियों के बीच त्वरित सहयोग और समन्वय की जरूरत पर बल दिया। श्री शाह ने आतंकवादियों को मिलने वाले धन और संगठित अपराध से निपटने में मनोनीत नोडल एजेंसियों के जरिए खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और बेहतर समन्वय पर भी बल दिया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रूपये से अधिक के लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए आज यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। आईएमएफ की प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अनुमानों में ये सुधार सुदृढ़ घरेलू मांग और मजबूत सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक वृद्धि को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2027 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई मुक्त व्यापार समझौतों से वैश्विक आर्थिक गतिविधि को बल मिलेगा और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी। भारत के कोस्टारिका के सैन जोस में स्थित नए रेजिडेंट मिशन ने कार्य

0: करना शुरू कर दिया है। यह मध्य अमरीका में अपने राजनयिक दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि मिशन भारत और कोस्टारिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मिशन आपसी राजनीतिक जुड़ाव को सुगम बनाएगा, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेगा। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से दो दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कोटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री तथा उद्योग और व्यापार मंत्री कारिल हावलेचक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति का और विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए आंकड़े एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
1: नई दिल्ली में भारत मंडपम में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक सम्मेलन में श्री मिश्रा ने कहा कि आंकड़े भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया ताकि आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया में एक रूपता लाई जा सके और समान परिभाषाओं तथा मानकों को अपनाया जा सके। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े इसीलिए भी आवश्यक हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण की प्रगति को मापा जा सके और एक समृद्ध, समावेशी, नवोन्मेषी और सतत राष्ट्र बनने की दिशा में देश की प्रगति का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम बता रहे हैं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को कैसे स्थापित किया गया है।
2: 2014 से केंद्र सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर भारत को एक नए राजनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार क्षेत्र में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में 70% से अधिक की भारी कमी आई है। सुरक्षा के माहौल में ये बड़ा सुधार बोडो, कार्बी और उल्फा गुटों सहित सशस्त्र समूहों के साथ हुए एक दर्जन से अधिक ऐतिहासिक शांति समझौतों का परिणाम है, जिसके चलते 10,000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को कई क्षेत्रों से हटाया गया है। इस सुरक्षित माहौल का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार ने क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश किया है। पीएम डिवाइन जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से 8 राज्यों में बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है, जिसमें हर मौसम के अनुकूल राजमार्गों, नए रेलवे नेटवर्क और हवाई अड्डे तक शामिल हैं। 2023 में अपने असम दौरे के दौरान श्री मोदी ने कहा था कि पूर्वोत्तर भारत देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक बनने की राह पर है।
3: असम में, नॉर्थ ईस्ट में सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। लंबे समय तक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपसा नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों में रहा है, लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आपसा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। बीते 8 सालों के दौरान नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में करीब 75% की कमी आई।
2: विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का यह समग्र दृष्टिकोण पूर्वोत्तर भारत को एक सीमांत इलाके से राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक विकास इंजन में तेजी से बदल रहा है। राकेश डोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली में 5 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए

0: दिल्ली सरकार की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन और महत्वपूर्ण मैचों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड पांचवीं बार आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। डेनमार्क बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से ओडेंस में शुरू हो गया है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु पहले दौर के मुकाबले में जर्मनी की यवोन ली से मुकाबला करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और के श्रीकांत भी आज अपने अपने पहले दौर के मुकाबले खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 598 अंक बढ़कर 72,523 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 189 अंक की बढ़त के साथ 22,552 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनमी फोरम को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, 684 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन पेशे खिदमत है एनसीईआरटी का स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, तो की जाए शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं, जिंदगी में कई लोग आते हैं, कुछ लोग सिर्फ मिलने के लिए, कुछ सिखाने के लिए और कुछ हमें बेहतर बनाने के लिए। इन लोगों के द्वारा जिंदगी हमें हर दिन कुछ न कुछ नया सिखाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर सुविचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू। अगला संदेश मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, अरजान और अबान अब्बासी। और गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहल्ला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रंभारानी निषाद, निखिल कुमार निषाद, नैतिक कुमार निषाद और कुमारी पुष्पांजलि निषाद के साथ साथ स्वप्निल कुमार निषाद। इदू ग्राम इंदु पोस्ट कारकल तालुका जिला उडुपी कर्नाटक राज्य से एच सिद्धार्थ जी ने लिखा है, उमंग के हर कार्यक्रम श्रोताओं के ज्ञान के विस्तार को बढ़ावा देने में बेहद सहायक हैं। अनजान नए नए विचारों पर रोशनी फैलती है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसे ज्ञान से भरे कार्यक्रम अधिक से अधिक प्रसारित करें। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। कच्छ भुज से जगदेश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी। आप सभी

श्रोताओं का हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमें संदेश भेजा। और अब सबसे हमारा निवेदन है, उमंग के साथ जुड़े रहिए उमंग से, और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए हमारा उमंग कार्यक्रम। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम ये भी जानिए श्रृंखला में आपके लिए लेकर आते हैं नई नई जानकारियाँ। तो इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ आविष्कारों की, खासकर ऐसे छोटे छोटे आविष्कारों की जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। आज हम एक ऐसी चीज की कहानी लेकर आए हैं जो इतनी छोटी है कि उंगलियों के बीच में आसानी से छिप जाए, लेकिन उस छोटी सी चीज ने इंसान के लिए आग जलाना बेहद आसान बना दिया। श्रोताओं, आप समझ गए होंगे ना, हम बात कर रहे हैं माचिस की। जी हाँ, माचिस, इसे हम लगभग रोज देखते हैं। डिब्बी खोली, तीली निकाली और घिसी, बस आग जल गई। सब कुछ कितना सामान्य लगता है ना, लेकिन श्रोताओं, क्या कभी आपने सोचा है कि ये छोटी सी बारूदी तीली बनी कैसे? हमारा उत्तर होगा शायद नहीं। तो प्रस्तुत है आज की कहानी इसी छोटी सी तीली की बड़ी यात्रा की। तो श्रोताओं, पहला सवाल ये उठता है कि जब माचिस नहीं थी तो लोग आग कैसे जलाते थे? ये जानना तो सच में बहुत रुचिकर होगा ना। हजारों हजार वर्षों तक आग जलाना एक मेहनत का काम था। आदिकाल में लोग चकमक पत्थरों को टकराकर, लकड़ी रगड़कर या चिंगारी पैदा करके आग जलाने की कोशिश करते थे। ये जंगलों में यदि आग लग जाती थी तो उसी दावानल से लोग आग का लाभ प्राप्त करते थे। और हाँ, वे ये भी कोशिश करते थे कि आग को जलाए रखें। श्रोताओं, मुझे तो आज भी याद है कि पहले गांव के कुछ घरों में लोग घूरे पर या आंगन में आग जलाए रखते थे और पूरा गांव उनके पास आग मांगने के लिए आता था, है ना? याद है आपको? ये आपसी मेलजोल और सहयोग की भावना का एक अनूठा उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन जरा सोचिए, अगर बारिश का मौसम हो, लकड़ियां गीली हो और तुरंत आग चाहिए, तब कितनी परेशानी होती होगी। और तब इंसान जरूर सोचता होगा कि काश कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे आग जल जाए। और यही इच्छा धीरे धीरे अलग अलग प्रयोगों का कारण बनी। तो आइए जानते हैं पहली माचिस कब और कैसे बनी। श्रोताओं, एक खास बात आपको बता दें कि आज की तरह आसानी से असुरक्षित जलने वाली माचिस अचानक किसी एक ही दिन में नहीं बनी। कई वैज्ञानिकों और आविष्कारकों के प्रयोग के बाद इसका विकास हुआ। तो आइए चलते हैं 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। यूरोप में एक ऐसी रासायनिक माचिस बनाने के प्रयोग होने लगे जिन्हें किसी सतह पर रगड़ने से आग पैदा हो सकती थी। शुरुआती रासायनिक माचिस आज की माचिस जितनी सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे रसायन इस्तेमाल होते थे जो हवा या ताप के प्रभाव में आकर तुरंत आग पकड़ लेते थे। इसकी वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। तो फिर धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने ऐसी माचिस बनाने पर काम शुरू किया जो उपयोग में आसान होने के साथ साथ ज्यादा सुरक्षित भी हो। और फिर आती है हमारी आज की माचिस। श्रोताओ, 19वीं शताब्दी में फॉस्फोरस से जुड़ी तकनीकों और घर्षण से जलने वाली माचिस के विकास ने इस दिशा में बड़ा बदलाव किया। वैज्ञानिकों ने ऐसी लकड़ी से तीली बनाई जो खुद भी आसानी से आग पकड़ लेती थी। और फिर तीली के सिरे पर ऐसे रासायनिक पदार्थों के मिश्रण का इस्तेमाल किया गया जो घर्षण और गर्मी से आग पैदा करने में मदद करते थे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन श्रोताओं, अब प्रश्न है कि डिब्बी के किनारे वाली खुरदरी पट्टी का विकास कैसे हुआ जिस पर घिसकर हम माचिस जलाते हैं? तो आपको बता दें कि आधुनिक माचिस में तीली और डिब्बी के घर्षण वाली सतह पर अलग अलग रासायनिक पदार्थ रखे जाते हैं। तीली को उस सतह पर रगड़ने पर घर्षण से गर्मी पैदा होती है और रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण लौ जल उठती है। हम समझते हैं कि हम सिर्फ तीली घिस रहे हैं, लेकिन श्रोताओं, उसके पीछे रसायन विज्ञान की पूरी कहानी चल रही होती है। आइए श्रोताओं, जानते हैं अब एक बड़ी रोचक बात कि इसका नाम माचिस क्यों पड़ा या इसका नाम माचिस कैसे पड़ा। भारत में इसे आमतौर पर माचिस कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे मैच बॉक्स कहते हैं। मैच शब्द एक फ्रांसीसी भाषा के मैश्चे शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है दिए या मोमबत्ती की बाती, जिसे आग पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जब ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन वॉकर ने घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई तो आग सुलगाने वाली उस तीली को भी मैच कहा जाने लगा। तो मैच यानी तीली, और इसे डिब्बी या बॉक्स में रखे जाने के कारण ये मैच बॉक्स हो गया। और धीरे धीरे यही शब्द हिंदी में माचिस बन गया, है ना? खाना बनाने से लेकर मोमबत्ती जलाने तक लंबे समय तक माचिस ने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे अब तो हमारे पास लाइटर्स भी हैं, लेकिन माचिस की भूमिका अभी भी कम नहीं हुई है। जी हाँ श्रोताओ, तो अगली बार जब आप माचिस की एक तीली

देखें तो याद रखिएगा, उस छोटी सी लकड़ी के पीछे सदियों की आग, मेहनत, प्रयोग और विज्ञान की कहानी छिपी है। और हाँ, बच्चों के लिए एक खास बात, खासतौर से हम अपने श्रोता विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं, आपको हम बताना चाहते हैं कि माचिस से प्रयोग करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। थोड़ी सी लापरवाही भी खतरनाक हो सकती है। विज्ञान को समझिए, उससे सीखिए और हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखिए। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी, आशा है आपको भी पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, किस ब्रिटिश रसायन शास्त्री ने पहली बार घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस ब्रिटिश रसायन शास्त्री ने पहली बार घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई? आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF टाइप कीजिए, वेबसाइट के अनुदेशों का पालन कीजिए और विकल्प पर जाकर मनचाही पुस्तक डाउनलोड कीजिए। इन्हीं पुस्तकों का ध्वनि रूप भी आपको NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो निवेदन करते हैं, इस चैनल को यानी NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। इसका शीर्षक है भारत प्यारा। कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक की एक नज्म पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा भारत भूमि के गौरव का गान किया गया है तथा बताया गया है कि हमारा देश भाषाई, भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण कितना अद्भुत और सुंदर है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
2: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
3: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
2: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
3: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
2: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
4: जवानों,
5: जी सर,
4: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
5: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
4: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
6: जी सर।
4: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
6: जी जनाब।
4: हाथ गोला हाथ में लो।
6: ले लिया जनाब।
4: अब पिन रिलीज करो।
7: फेंको,
6: फेंको जनाब।
8: अरे अरे, ये क्या हुआ,
9: ये क्या हुआ?
8: अरे बच्चों,
9: बच्चों,
8: फट जाएगा,
9: फट जाएगा,
8: फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा,

0: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली की सी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
2: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
3: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
2: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
4: सही में
2: बहादुर सैनिक हो तुम।
0: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
5: मे आई कम इन सर?
3: यस, कम इन।
5: सर,
3: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
5: सर,
3: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
5: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
3: हाँ हाँ, कहो।
5: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
3: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
5: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
3: गो अहेड यंग मैन।
5: सर,
0: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
1: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
0: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
1: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
2: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
6: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
2: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
7: जी जनाब।
3: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
5: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
6: जी सर, हम आपके टैंक को कवर देंगे। सर, वो देखिए सामने।

0: ऐसा दुश्मन का टैंक आ रहे हैं।
1: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
0: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
1: फायर।
0: सर ये टैंक तो गया।
1: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है, जल्दी करो प्रेमलाल। फायर, समय मत गवाओ, फायर।
0: सर ये टैंक तो गया।
1: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
0: यस सर।
2: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौबिंडा छोड़कर चली गई।
3: इस तरह चौबिंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी, और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
2: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कार्यक्रम। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: نہ اپنائیں خوشیاں، اپنا کر منو درپن۔ کال کریں 844-844-0632 پر اور پائیں NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अर्शद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी तक आप सुन रहे थे NCERT का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग। मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज़, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल की आवाज है। सावन अब से लेकर शाम 5 बजे तक अब हम आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस की प्रोग्राम रिले करेंगे। रिले का थोड़ी देर इंतजार कीजिए।

से पहले 3:30 बजे प्रोग्राम पेश किया जाएगा अदब नुमा, और शाम 4 बजे आप लुत्फानंदोज़ होंगे फिल्मी मौसीकी से। फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। शाम 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी, और शाम 5 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामिन, ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और डीडी फ्रेडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। सपहर के 3:05 हुआ चाहते हैं आपसे चंद लम्हों के बाद आप खबरें सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप माजिद अली से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत की ये लगातार कोशिश रही है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि भारत की सलाहियतें दूसरे मुल्कों के लिए भी इम्कानात के नए दरवाजे खोलें। वजीर आजम ने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम से खिताब किया। भारत ने पहली बिम्स्टेक वजराय दाखिला मीटिंग की मेजबानी की। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि बिम्स्टेक इलाकाई यकजहती, इकतसादी तआवुन और इज्तमाही सलामती के अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। बैनुल अक्वामी मालियाती फंड IMF ने 2026-27 के लिए भारत की मजमुई घरेलू पैदावार GDP की तरक्की के तखमीने को बढ़ाकर 7% कर दिया है। कनाडा की वजीर खारजा अनीता आनंद आज से अपने 2 रोजा भारत दौरे पर रहेंगी और शेफाली वर्मा और शुभमन गिल को ICC की जानिब से सितंबर 2026 के लिए खवातीन और मर्दों के प्लेयर ऑफ द मंथ करार दिया गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकज ने अपनी गवर्नेंस और काम करने के तौर तरीकों में बाइख्तियार बनाए जाने का उसूल अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत की तरक्की इज्तमाही नमू और साझा मौके पर मबनी है। उन्होंने कहा कि इक्तदार का मतलब सिर्फ आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं है बल्कि ये दूसरों को बाइख्तियार बनाने की सलाहियत भी है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में डिजिटल कुव्वत इस तब्दीली का एक अहम अंसर बनकर उभरी है और इस विजन को आगे बढ़ाने में ये एक अहम किरदार अदा कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि डिजिटल कुव्वत ने भारत के लिए वसी मौके के दरवाजे खोल दिए हैं। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत की ये मुसलसल कोशिश है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि भारत की सलाहियतें दीगर मुल्कों के लिए भी मौके के नए दरवाजे खोलें। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि भारत ने पिछली दहाई में 25 करोड़ लोगों को गरीबी की सतह से ऊपर उठाया है। भारत आज नई दिल्ली में कसीर रुखी तकनीकी और इक्तसादी तआवुन के लिए बंगाल इकदाम यानी बिम्स्टेक के वज़राए दाखिला की पहली मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। ये तारीखी मीटिंग दहशतगर्दी, मुनज्जम जरायम, नारकोटिक्स, इंतहा पसंदी, गैर कानूनी तजारत और साइबर खतरात से निपटने के तई मुश्तरक आजम की अलामत है। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि इलाकाई सालमियत, इकतसादी तआवुन और मजमूई सिक्योरिटी के लिए बिम्स्टेक एक अहम प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत

सुदैव कुटुंबकम के उसूल के तहत हमेशा अमन और इंसानी फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म रहा है। भारत की दहशतगर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की पॉलिसी की तौसीक करते हुए वजीर दाखला ने इज्तमाही अज़्म के लिए कहा, जिससे इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि खित्ते में पनाह भर्ती करने, तरबियत देने, फंडिंग करने और पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ सरगर्मियों की खातिर दहशतगर्द अपने नेटवर्क के लिए जगह न हासिल कर सकें। दहशतगर्दी के खिलाफ तआवुन पर बात करते हुए वजीर मौसूफ ने नोडल एजेंसियों के जरिए इंटेलिजेंस के तबादले और दहशतगर्दी को फंडिंग करने और मुनज्जम जरायम के खिलाफ बेहतर तआवुन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सभी बिम्स्टेक मेंबर मुल्कों से तआवुन को मजबूत करने को कहा, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी मुजरिम या दहशतगर्द कानून की गिरफ्त से बाहर न जा सके, भले ही वो

नेटवर्क के लिए जगह न हासिल कर सकें। दहशतगर्दी के खिलाफ तआवुन पर बात करते हुए वजीर मौसूफ ने नोडल एजेंसियों के जरिए इंटेलिजेंस के तबादले और दहशतगर्दी को फंडिंग करने और मुनज्जम जरायम के खिलाफ बेहतर तआवुन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सभी बिम्स्टेक मेंबर मुल्कों से तआवुन को मजबूत करने को कहा ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी मुजरिम या दहशतगर्द कानून की गिरफ्त से बाहर ना जा सके, भले ही वो कहीं भी छुपा हुआ हो। बिम्स्टेक एक इलाकाई तंजीम है जिसका कयाम 1997 में अमल में आया था। खलीज बंगाल के अतराफ के मुल्कों और उसके पड़ोसी मुल्कों के दरमियान तकनीकी और इकतसादी तआवुन को फरोग देना इसका मकसद है। बिम्स्टेक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड 7 मेंबर मुल्क शामिल हैं। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक जमहूरिया के नायब वजीर आजम और सनत और तजारत के वजीर कारेल हैवलीसेक से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि दोनों मुल्कों ने आत्मनिर्भर भारत को फरोग देने की खातिर भारत चेक मुश्तरक दिफाई कमेटी के तहत इस तआवुन को मजीद फरोग देने से इत्तफाक किया है। माहौलियात और जंगलात के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली में 5 अवामी ईवी चार्जिंग स्टेशनों का आगाज किया और 13 नए कंटिन्यूअस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों का इफ्तिताह किया। मीडिया से बात करते हुए जनाब यादव ने दिल्ली में आलूदगी पर काबू पाने के इकदाम के नफाज में मोहतरमा गुप्ता की क्यादत की, ये कहते हुए सताइश की कि हुकूमत ने आलूदगी के बड़े हॉट स्पॉट पर 11 इकदाम पर अमल आवरी के इकदाम किए हैं। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी रहनुमा सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में लिया है जो कौमी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कल नामजद एहतजाज करने के मकाम के तौर पर जंतर मंतर को हटा दिया है। एहतजाज और मुजाहिनों की नई जगहें रामलीला मैदान, बुराड़ी का मैदान और मशरकी दिल्ली में सीबीडी मैदान हैं। पंजाब के मानसा में आज एक मनुष्यात मुखालिफ कारकुन परविंदर सिंह जोटा को मुबैना तौर पर एक केमिस्ट ने दिन दहाड़े गोली मारकर हलाक कर दिया। आज यह हादसा उस वक्त पेश आया जब परविंदर सिंह मुबैना तौर पर मनुष्यात बेचने पर एतराज करने के लिए केमिस्ट की दुकान पर गए थे। मनुष्यात मुखालिफ कारकुन और उनके साथियों के साथ बहस के दौरान केमिस्ट ने परविंदर पर गोली चला दी। उन्हें 3 गोलियां लगीं और उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने 2026-27 के लिए भारत की मजमूई घरेलू पैदावार GDP की शरह नमू के तखमीन को 6.4 से बढ़ाकर 7% कर दिया है। IMF ने अपनी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कहा है कि तखमीने में कहा गया है कि यह तज्जिया तवक्को से ज्यादा नमू की बुनियाद पर किया गया है। उसने कहा है कि भारत तरक्की के तज्जियों को बुनियाद पर मुमताज मुल्क बनकर उभर रहा है जिससे मुस्तहकम और ताकतवर तरक्की की निशानदेही होती है। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा ने आज कहा है कि शवाहिद पर मबनी पॉलिसी बनाने और खासतौर पर मसनूई जहानत के दौर में डेटा को जमा करना और उसका तज्जिया करना बहुत जरूरी है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आदाद शुमार की वजारत और प्रोग्राम के निफाज से मुतालिक कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब मिश्रा ने कहा कि भारत की तरक्की के सफर में डेटा एक बुनियाद की हैसियत रखता है। कनाडा की खारजी उमूर की वजीर अनीता आनंद आज से भारत का 2 दिन का दौरा करेंगी। अपने दौरे के दौरान कल वो वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और हुनरमंदी की तरक्की और एंटरप्रेन्योरशिप के वजीर जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगी। कोस्टारिका के सैन जोस में भारत के नए रेजिडेंट मिशन ने कामकाज शुरू कर दिया है। इस कदम से वस्ती अमेरिका में भारत की सफारती पहचान को तकवीत मिलेगी। तवक्को है कि ये मिशन कोस्टारिका और भारत के दरमियान बाहमी रिश्तों को मजीद मजबूत करेगा। वजारत खारजा ने कहा है कि ये सियासी राबतों के दरमियान दूरी को भी कम करेगा। बाहमी तजारत, सरमाकारी और इकतसादी तआवुन और बाहमी मफाद के शोबों में तआवुन को मजबूत करेगा। बांग्लादेश के खारजी उमूर की वजीर शमा उबैद इस्लाम ने कहा है कि सऊदी अरब में जारी तनाजे के दौरान 2 बांग्लादेशी हलाक हुए हैं जबकि 24 से ज्यादा बांग्लादेशी बाशिंदों का रियाद के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कई जख्मी बांग्लादेशी अफराद को इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट में रखा गया है। ढाका में नामा निगारों से बात करते हुए उन्होंने शहरियों की हलाकत और लोगों

0: ये जो अभी आपने युडली सुनी, ये उनका अपना एक ज़ाती अंदाज था और ये उन्हीं की ईजाद थी, उनका स्टाइल था, और ये एक बहुत बड़ी पहचान बनी किशोरदा की। चार शादियाँ की, पहली शादी रुमा घोष से हुई, और उसके बाद मधुबाला, मधुबाला का इंतकाल हुआ तो फिर उन्होंने अदाकारा योगिता बाली से, और सबसे बाद में लीना चंद्रावकर उनकी ज़िंदगी में आई। और कॉमेडी नगमों की अगर बात की जाए तो इस मैदान में किशोर दा ने अपना एक अलग मकाम बनाया। इनफरादियत है दिगर गुलकारों से इस मैदान में उनकी।
1: बाबू घबराते हैं, बाबू घबराते हैं।

0: अगर बात की तमीज नहीं।
1: किशोरदा को बेहतरीन गुलकार के लिए 28 नॉमिनेशन मिले फिल्म फेयर एजाज के लिए और 8 में उनको कामयाबी मिली।

1964 में एक फिल्म मंजरे आम पर आई थी, दूर गगन की छांव। इस फिल्म की खासियत ये थी कि किशोर कुमार इस फिल्म के हिदायतकार भी थे, फिल्म साज भी थे और राइटर भी थे, अदाकार भी थे, गुलकार भी, मौसीकार भी और यहाँ तक के नगमा निगार भी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी सलाहियतों का कि कितनी सलाहियतें उनमें थी, वो बस सलाहियत थे, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। बहुत ही मनमौजी किस्म के गुलकार और अदाकार थे किशोरदा।

0: मीडियम वेव्स 1,071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। पेश खिदमत प्रोग्राम अदब नुमा।
1: अदब नुमा प्रोग्राम के साथ एक मरतबा फिर मैं सबीहा हाजिर खिदमत हूँ। तमाम सुनने वालों की खिदमत में आदाब बजा लाती हूँ। जी जनाब, तो प्रोग्राम का वक्त शुरू हो गया है और अगर जहन में रहता है आपके कि आज अदब नुमा का दिन हुआ करता है तो यकीनन आपको इंतजार भी रहता होगा कि आज किसका कलाम सुनेंगे और किसका अफसाना सुनवाया जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई तजबजुब नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं कि ये प्रोग्राम हर दिन आता है आज ही के दिन, यानी कि हर मंगल के दिन। तो आज के प्रोग्राम में भी है अफसाना और कलाम शायर। वैसे जहां तक बात है कलाम की, तो कुछ खूबसूरत अल्फाज ऐसे होते हैं जिनको हम अगर याद कर लें, अपने जहन में महफूज कर लें, तो काहे बगाहे हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, आज के कलाम में भी कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको लगेंगी कि आपकी ही बातें हैं, कुछ ऐसे अल्फाज होंगे जो आपको बहुत पसंद आएंगे, आप उन्हें महफूज कर लीजिएगा। जनाब मुनीर हमदम पेश कर रहे हैं अपना कलाम, आइए सुनते हैं।
2: गजल का मतलब समाप्त फरमाएं। सितारा टूट कर फिर सो गया क्या, सितारा टूट कर फिर सो गया क्या, कोई मिसरा मुकम्मल हो गया क्या, कोई मिसरा मुकम्मल हो गया क्या, यहीं फैली हुई थी कुछ लकीरें, यहीं फैली हुई थी कुछ लकीरें, कोई आके उन्हें भी धो गया क्या, कोई आके उन्हें भी धो गया क्या। और शेर देखें कि खला में चांद बुनती जा रही हो, खला में चांद बुनती जा रही हो, कोई ख्वाबों में जन्नत बो गया क्या, कोई ख्वाबों में जन्नत बो गया क्या, उसे देखा तो फिर आया समझ में,

उसे देखा तो फिर आया समझ में, मेरे दिल को अचानक हो गया क्या, मेरे दिल को अचानक हो गया क्या, और खुदा जाने मेरी मंजिल कहाँ है, खुदा जाने मेरी मंजिल कहाँ है, मैं जिसको ढूंढता हूँ खो गया क्या, मैं जिसको ढूंढता हूँ खो गया क्या, सितारा टूट कर फिर सो गया क्या, कोई मिसरा मुकम्मल हो गया क्या। और दूसरी गज़ल का मतलब समाप्त फरमाए कि वो मेरी आँख से ओझल हुआ था, वो मेरी आँख से ओझल हुआ था, मगर ये हादसा तो कल हुआ था, मगर ये हादसा तो कल हुआ था। और शेर समाप्त फरमाए वो ख्वाबों की हिफाजत कर रहे थे, वो ख्वाबों की हिफाजत कर रहे थे, मगर तामीर एक जंगल हुआ था, मगर तामीर एक जंगल हुआ था। और फिर देखें कि बरसता था किसी के दिल में तन्हा, बरसता था किसी के दिल में तन्हा, वही टुकड़ा जो कल बादल हुआ था, वही टुकड़ा जो कल बादल हुआ था। चलो इन आईनों से जान छूटी, चलो इन आईनों से जान छूटी, मगर वो शख्स जो पागल हुआ था, मगर वो शख्स जो पागल हुआ था। और शेर समाज फरमाए किसी की आँख से बरसा तो जाना, किसी की आँख से बरसा तो जाना, चिरागों का धुआं काजल हुआ था, वो मेरी आँख से ओझल हुआ था, मगर ये हादसा तो कल हुआ था। गजल का मतलब समाप्त फरमाए कि इस जमी को चाक होना चाहिए, इस जमी को चाक होना चाहिए, अब हमें शफाक होना चाहिए, अब हमें शफाक होना चाहिए। और शेर समाप्त फरमाए कि शेर का अंजाम चाहे कुछ भी हो, शेर का अंजाम चाहे कुछ भी हो, तबसरा बेबाक होना चाहिए, तबसरा बेबाक होना चाहिए। और मुद्दतों से तप रहा है रात दिन, मुद्दतों से तप रहा है रात दिन, आसमां को खाक होना चाहिए, आसमां को खाक होना चाहिए। और दोस्तों की महफिलों को छोड़कर, दोस्तों की महफिलों को छोड़कर, घर में जाकर पाक होना चाहिए, घर में जाकर पाक होना चाहिए। और देखें कि सोचता हूँ नन्हे बच्चों की तरह, सोचता हूँ नन्हे बच्चों की तरह, मुझको भी चालाक होना चाहिए, मुझको भी चालाक होना चाहिए, इस जमीन को चाक होना चाहिए, अब हमें शफाक होना चाहिए। गजल का मतलब समाज फरमाए समंदर में सितारों में कभी वो था कभी मैं था, समंदर में सितारों में कभी वो था कभी मैं था, चमकते आबशारों में कभी वो था कभी मैं था, चमकते आबशारों में कभी वो था कभी मैं था। और शेर देखें कहीं जर्रे की सूरत में कहीं पर्वत की सूरत में, कहीं जर्रे की सूरत में कहीं पर्वत की सूरत में, मगर सब इश्तियारों में कभी वो था कभी मैं था, कभी वो था कभी मैं था। और देखें कि हवा बनकर घटा बनकर सुनहरी सी सदा बनकर, हवा बनकर घटा बनकर सुनहरी सी सदा बनकर, तुम्हारी रह गुजारों में कभी वो था कभी मैं था, तुम्हारी रह गुजारों में कभी वो था कभी मैं था। और शेर समाज फरमाए ये काली धूप के साए कहाँ इतना चमकते थे, ये काली धूप के साए कहाँ इतना चमकते थे, चमकते से इशारों में कभी वो था कभी मैं था। ये काली धूप के

0: साए कहाँ इतना चमकते थे, चमकते से इशारों में, कभी वो था कभी मैं था। और समाज फरमाए कि कभी चांदी की बेलों में, कभी फूलों की रंगत में, कभी चांदी की बेलों में, कभी फूलों की रंगत में, खुदा के सब नज़ारों में, कभी वो था कभी मैं था। समंदर में सितारों में, कभी वो था कभी मैं था। चमकते आबशारों में, कभी वो था कभी मैं था। गज़ल का मतलब समाप्त करना है कि सूरज को तोड़ने का तमाशा बहुत हुआ, सूरज को तोड़ने का तमाशा बहुत हुआ, फिर सारे राज खुल गए अच्छा बहुत हुआ, फिर सारे राज खुल गए अच्छा बहुत हुआ। उसको तो उसके ख्वाब की ताबीर मिल गई, उसको तो उसके ख्वाब की ताबीर मिल गई, लेकिन मेरे कलाम का चर्चा बहुत हुआ, लेकिन मेरे कलाम का चर्चा बहुत हुआ। और जिसने खुदा के नाम से कश्ती चलाई थी, जिसने खुदा के नाम से कश्ती चलाई थी, फिर उसके चार समत उजाला बहुत हुआ, फिर उसके चार समत उजाला बहुत हुआ। और फिर देखें कि कल रात मीर जी तो गज़ल कह के चल दिए, कल रात मीर जी तो गज़ल कह के चल दिए, गालिब से रात भर मेरा झगड़ा बहुत हुआ, गालिब से रात भर मेरा झगड़ा बहुत हुआ। वो आसमां की ओर से तकता है क्यों मुझे, वो आसमां की ओर से तकता है क्यों मुझे, हमदम हजारों बार ये धोखा बहुत हुआ, हमदम हजारों बार ये धोखा बहुत हुआ। सूरज को तोड़ने का तमाशा बहुत हुआ, फिर सारे राज खुल गए अच्छा बहुत हुआ। गज़ल का मतलब समाप्त फरमाएं, कोई साया उधर था और मैं था, कोई साया उधर था और मैं था, अजब सा दिल में डर था और मैं था, अजब सा दिल में डर था और मैं था। और गुजरना था मुझे भी दायरों से, गुजरना था मुझे भी दायरों से, बड़ा मुश्किल सफ़र था और मैं था, बड़ा मुश्किल सफ़र था और मैं था। और शेर समाज फरमाए, मेरी आंखें तमाशा बन गई थीं, मेरी आंखें तमाशा बन गई थीं, सितारों का गुजर था और मैं था, सितारों का गुजर था और मैं था। जहाँ सब हाथ में पत्थर लिए थे, जहाँ सब हाथ में पत्थर लिए थे, वहीं शीशे का घर था और मैं था, वहीं शीशे का घर था और मैं था। और शेर देखें कि हवाएं जाल बुनती जा रही थीं, हवाएं जाल बुनती जा रही थीं, चरागों का नगर था और मैं था, चरागों का नगर था और मैं था, कोई साया उधर था और मैं था, अजब सा दिल में डर था और मैं था।
1: कलामे शायर के तहत सामईन अभी आप सुन रहे थे जनाब मुनीर हमदम से उनका कलाम। और अब बारी आ गई है अफसाने की। तो आज का जो अफसाना है उसका उनवान है महबूब। महबूब का मतलब होता है बहुत ही जो पसंद हो चीज, ये लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी जब जिस किसी को आप पसंद करते हैं तो वो आपका महबूब हो गया। कोई भी चीज जो आपको पसंद है वो भी महबूब हो सकती है, जो भी चीज अच्छी लगे, चाहे वो चीज हो, जगह हो या फिर फर्द हो, ये होता है महबूब। महबूब उनवान से जो अफसाना है वो पेश कर रही है मोहतरमा राफिया मंजूरुल अमीन, आइए सुनते हैं।
2: पुल पार करते ही थोड़ी दूर पर सेंचुरी का बड़ा सियाह बोर्ड लगा था, जहां दूर ही से जंगल के घनेरे साए नजर आते थे। सेंचुरी में दाखिल होकर कुछ दूर जाने पर फॉरेस्ट गार्ड्स के चंद झोंपड़े बने थे, बांस और खपरेल के, जिन पर सर्द हवाओं को रोकने के लिए काली मिट्टी का लेप कर दिया गया था। उन झोंपड़ों में सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड ही नहीं बल्कि अक्सर वो मजदूर भी चंद रोज के लिए आकर बस जाते, जो आरजी तौर पर बांस और सागवान के जंगल काटने पर मामूर किए जाते।

तब उन झोपड़ों में कुछ रौनक हो जाती। त्योहारों और पूर्णिमा पर ढोल बजते और ये मजदूर और उनकी औरतें ताड़ी के सुरूर से सरशार अपने इलाकाई गीत गा गा कर धपड़े की ताल पर खूब नाचते। लेकिन जब ये मजदूर काम निपटाकर अपनी मजदूरी लेकर चले जाते तब वहां सिर्फ तन्ना और उसका खानदान बाकी रह जाते। तब तन्ना की औरत अपने बच्चों समेत उन झोपड़ों में घुस पड़ती कि शायद कोई भूला बिसरा सामान हाथ लग जाए। उसे हमेशा ही नौउम्मीदी होती, लेकिन अब खाली झोपड़े झांकना उसकी आदत सी बन गई थी। सिर्फ एक बार उसे वहां मिट्टी का एक खाली मटका मिल गया था जिसे वो उठा लाई, लेकिन दो दिन बाद 4 मील की मसाफत तय करके उस मजदूर की औरत वापिस आई और लड़ झगड़ कर अपना घड़ा वापिस ले गई। तन्ना आदिवासी था। वो जब वहां फॉरेस्ट गार्ड की तरह आया था तो सिर्फ उसकी बीवी साथ आई थी। उसके 8 बच्चे उसी झोपड़े में वारिद हुए थे। अब वो और उसकी बीवी दोनों वक्त से पहले बूढ़े हो चुके थे। उनका बड़ा लड़का मैट्रिक पास करके शहर चला गया था। वो अपने बाप की तरह फॉरेस्ट गार्ड नहीं बनना चाहता था, क्योंकि फिर उसे भी जिंदगी भर फॉरेस्ट गार्ड ही बने रहना पड़ता जैसा उसका बाप था, क्योंकि वो आदिवासी था। उसके दूसरे साथी जो आदिवासी नहीं थे उनकी तरक्कियां हो गई थी, वो एक एक करके शहर जा बसे थे। बच्चों में तीसरा नंबर गाची का था। शक्ल सूरत में गाची तन्ना के बच्चों में सबसे बाकी थी, फिर भी उसका कदरदान कोई नहीं था, क्योंकि वो गूंगी थी। 8 बच्चे पैदा करके तन्ना की औरत जिंदगी की दौड़ में हांफ गई थी। अब वो झोपड़े के कोने में पड़ी खांसती रहती और गाची की बड़ी बहन सोनी उस सारे कुंबे की देखभाल करती। गाची से पकड़ धकड़ कर कुछ काम तो ले लिया करती वो, लेकिन उसकी नजर चूकते ही गाची हिरनी की तरह चौकड़ियां भरती जंगल में गुम हो जाती। इस तरह उसे डांट फिटकार से नजात मिल जाती। सोनी के लिए भी यही गनीमत था, क्योंकि गाची की मौजूदगी उसके लिए भी दर्द-ए-सर थी। जितनी देर वो सामने होती कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करती। कुंबे की लड़कियों को तो स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं थी। सोनी बेचारी 2 छोटे भाइयों को सुबह तैयार करके उनका तोशा हाथ में देकर स्कूल भिजवाती तो उनके पीछे पीछे जाकर गाची उनकी रोटियां छीनकर भाग जाती। वही रोटियां सेंचुरी के बंदर हजम करते जिनका गाची से याराना था। बंदर ही नहीं, ऐसा लगता था जैसे सेंचुरी के सभी जानवर गाची को अच्छी तरह जानते थे और गाची उन्हें। उनके ताल्लुकात काफी मुस्तहकम थे, क्योंकि वो जानवर कभी उसे गूंगेपन का ताना नहीं देते थे न मार फिटकार करते। उसका गुजर जंगल के सिर्फ उस हिस्से में नहीं था जहां खूनखार जानवरों की इकलीम थी। वैसे भी उसकी छठी हिस उन जानवरों की मौजूदगी से उसे खबरदार कर देती थी और वह सरपट वहां से भाग आती। जिंदगी के 15-16 सालों में भी उसका खिलंडरापन खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसमें इस्तग़ना भी शामिल हो गई। घर में उसके किसी को चंदन परवाह नहीं थी, सिर्फ माँ थी जो उसकी तवील गैर हाजिरी को महसूस करके फिक्रमंद होती। वो तन्ना को दिख करती कि जाकर गाची को ढूंढ लाए, और वो खामोशी से अपने चिलम पीता बैठा रहता, क्योंकि वो जानता था कि गाची जंगल में सरसराता हवा का झोंका है, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और वाकई गाची वापस आ जाती। भूख लगी होती तो खुद ही हंडिया से निकाल कर कुछ खा लेती, वरना दबक कर माँ की गुदड़ी में ही सो जाती, जैसे वो खुद भी माँ की गुदड़ी का एक पैबंद हो। रात में जंगल के सारे राज अंगड़ाइयां लेकर जाग पड़ते। जुगनुओं के झुंड तीरगी में चकमा की चिंगारियों की तरह चमक उठते। बाइसन के हलीम गौल मतानत से चहलकदमी के लिए निकलते, गोया काले कोट और सफेद जुराबों में खैर से गाली वफद हों। चीतों की सब्जगों शरारा सी आंखें जो किसी भी इंसान के खून को मुंजमित करने के लिए काफी हैं, या फिर पत्ते के खड़कने से ही चौकन्ने होकर चौकड़ियां भरते हिरनों के गौल, खरगोशों के बर्फाब जिस्म और सरसराते सांप टिकारा की बेमकसद चीखें। शहरों में बसने वाले इंसानों से ये जानवर भले थे जो बरसा बरस से एक ही जंगल में साथ साथ गुजारा करते आ रहे थे। हर कोई अपनी बोली अलग बोलता था, लेकिन उनके पास न कभी इलेक्शन होते थे, न जबान के असास पर खून खराबे, न कोई किसी की जमीन छीनता था, न इस्मतों का नीलाम होता था। लेकिन इन सब गैर मानुस मजाहिर के बावजूद

मौजूद सेंचुरी में रहजन घुस ही आते, बल्कि जंगल का यही माहौल उन्हें जुर्म की तरफ रागिब करता। सिर्फ अजदहों की केचलियां, हिरनों की खालें, रीचों, शेरों और चीतों के चमड़े ही नहीं, बल्कि सागवान और बांस के परे साफ कर दिए जाते। जब तक कि हुकाम को इसकी खबर होती, रहजन चंपत हो जाते। कभी कुछ पकड़े भी जाते जो या तो चंद माह की जेल काटते या रिश्वतें देकर छूट जाते। इनमें सियासी ताल्लुकात की बिना पर छूटने वालों की फेहरिस्त अलग थी। ये ऐसे लोग थे जो बेधड़क सेंचुरी में शिकार करके अपना शौक पूरा करते और उनकी गोलियों की आवाज हुक्काम के कानों से टकरा कर लौट जाती। कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। बहन भाइयों से छीना झपटी तो गाची सिर्फ मुंह का मजा बदलने के लिए करती थी। उसका महबूब मशगला कुछ और ही था, जिसका इल्म सिर्फ उसी को था, या उस छोटी सी झील को जो सागवान के जंगल से परे वहां थी जहां बांस के जंगल शुरू होते थे। उस झील के किनारे गाची अपने घुटनों पर हाथ बांधे घंटों बैठी रहती, खामोश साकित। खामोशियों से साजबाज उसे किसी ने नहीं सिखाई थी, वो उन्हें अपने नसीब में लिखवा लाई थी। दरअसल वो अपने अंदरूनी हंगामा खेजियों में बाहर की खामोशियां उंडेल लेना चाहती थी, बाहर की दुनिया के नामनेहाद पुरशोर तलातम का उस कयामत से क्या मुकाबला था जो हर दम उसके अंदर बरपा रहती थी। यही उसका महबूब मशगला था। उसका एक महबूब भी था, बड़ी बड़ी आंखों और चुस्त बदन वाला हिरन। हिरनों का एक दल उससे इतना मानूस हो गया था कि गाची वहां बैठी होती तब भी वो अपनी गर्दनें बढ़ाए झील के शफाफ पानी में अपनी थूथनियां डुबोए पानी पीते। इन्हीं में से एक हिरन गाची का महबूब था। गाची ने दिल ही दिल में उसे कोई नाम जरूर दिया होगा। गाची बोल नहीं सकती थी, लेकिन दिल की भी जबान कहाँ होती है। गाची सुन नहीं सकती थी, लेकिन दिल के भी कान कहाँ होते हैं। फिर भी दिल दिल की बात सुन लेते हैं। उनका रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था। कालिदास ने ऐसे ही मंजर को देखकर शकुंतला को जन्म दिया होगा। एक दिन गाची के खामोशी की सेज पर मोहन पहुंच गया। मोहन का भी सिलसिला नज़्ब रहजनों से मिलता था। वो एक ऐसी टोली का मेंबर था जो चोरी छिपे न सिर्फ बांसों के परे साफ कर दिया करते थे, बल्कि उसने अंधेरी रातों में अपनी बंदूक से खरगोश और हिरनों के शिकार भी किए थे। वो जानता था कि वहीं पास एक झील है, उसे वहां प्यास की शिद्दत खींच लाई थी। वो पहले भी वहां आ चुका था, लेकिन उसने कभी गाची को वहां नहीं देखा था। गाची को भी मोहन की आमद ने हैरान कर दिया। उसने कई बार वहां सेंचुरी देखने के लिए आने वालों की सफेद सफारी गाड़ी भी देखी थी, जिसे देखकर वो छिप जाया करती थी। वो उन पुरशोर याजूज माजूज को अपनी खामोशी की दीवार चाटने देना नहीं चाहती थी। मोहन को देखकर वो बौखला कर खड़ी हो गई, और बहुत जल्द मोहन को पता चल गया कि गाची गूंगी है। साली गूंगी है, ये भी अच्छा हुआ, वरना अभी भाग कर खबर कर देती, उसने सोचा। लेकिन खतरा तो फिर भी था, वो गूंगी होने पर भी वहां उसकी मौजूदगी की खबर दे सकती थी। उसने दिल में मंसूबा बनाया और दोनों हाथ फैलाकर गाची के सामने खड़ा हो गया। उसने इशारों से गाची को बताया कि वो खुद भी गूंगा है और प्यास उसे वहां खींच लाई है। वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सिर्फ पानी पीकर चला जाएगा। लेकिन गाची के गूंगे हुस्न ने पानी पीने के बाद भी उसे वहां बांधे रखा। मोहन का गूंगा होना भी गाची के लिए बड़ा दिलचस्पी का बायस था। उसका अपना हम जबान उसे जिंदगी में पहली बार मिला था। दुनियादार मोहन गाची की लगावट की नजर फौरन भाग गया। औरत हसीन हो और फिर गूंगी भी हो तो मर्द की नजर में उसका हुस्न दुबाला हो जाता है। दूसरे दिन फिर उसे गाची की कशिश वहां खींच लाई, लेकिन वो कुछ दूर ही ठिठक कर रह गया, क्योंकि गाची झील के पानी से पत्थर पर अपनी एड़ियां रगड़कर धो रही थी, और वहां उसकी मौजूदगी के बावजूद हिरनों का जत्था झील के आसपास जमा था। मोहन की आहट पाकर सारे हिरन रफू चक्कर हो गए, सिवाय महबूब के, जिस पर गाची ने अपना हाथ रखा हुआ था। उस रोज मोहन के दिमाग ने कुछ और सोचा। वो एक अदना दर्जे का पोचर था, बंदूक से हिरन खरगोश और जंगली सुअरों का शिकार किया करता था, लेकिन कारतूस अब मुश्किल से मिलते थे और महंगे भी हो रहे थे। वो गाची की मदद से जिंदा हिरन हासिल करके ऊंचे दामों फरोख्त कर सकता था। कुछ सोचकर वो आगे बढ़ा। गाची उसे देखकर खुश हो गई, महबूब के गले में बाहें डाले

0: उसे देखकर हंसती रही। लेकिन मोहन ने जब महबूब की पीठ सहलाते सहलाते उसे बाहों में लेना चाहा, तो वो उछलकर खड़ी हो गई। उसके अब्रू तन गए, नागवारी उसके चेहरे से जाहिर थी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मोहन ने इशारों से समझाया और महबूब को गाची के हवाले कर दिया। वो सिर्फ ये देख रहा था कि कितनी सीधी उंगलियों घी निकल सकता था। दूसरे दिन शाम के धुंधल के तारीकियों में ढलने लगे और मोहन नहीं आया तो गाची भी थक हार कर उठी। हिरनों का दल जा चुका था, सिर्फ महबूब को उसने रोक लिया था। मोहन के इंतजार की घड़ियां तन्हा काटना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। एक आहट ने महबूब को चौंका दिया और साथ ही गाची ने पलट कर देखा, वहां मोहन खड़ा था। लेकिन आज उसके हाथ में बंदूक भी थी, उसके तेवर बदले हुए थे। मोहन वैसे भी गूंगी के रोमांस से उकता गया था। दूसरे, उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और हिरन का गाहक तैयार था। ए गूंगी, वो हिरन मेरे हवाले कर, मोहन ने एक्टिंग को बालाए ताक रखते हुए बेसब्री से कहा। गाची के चेहरे पर एक गर्वनाक हैरानी छा गई। मोहन और उसके दरमियान खामोशी का जो तार बन गया था, एक झनकार के साथ टूट गया। उसने मोहन का मतलब समझकर महबूब पर अपनी गिरफ्त और तंग कर ली। वो न सिर्फ महबूब को पनाह दे रही थी, बल्कि गाची के लिए उसका लमस धड़कते दिल की हिम्मत बन गया था। वो किसी भी कीमत पर महबूब को दुश्मन के हवाले करने तैयार नहीं थी। अगर जिंदा नहीं देगी तो मैं उसे मार डालूंगा, मोहन ने बंदूक तान ली और चश्मे जदन में मौका पाकर गाची महबूब को कान से घसीटते फरार हो गई। साथ ही मोहन भी दौड़ा, लेकिन उसका जिस्म कुछ भारी था, जबकि गाची बिजलियों की पाली थी। धूप और छांव की तरह झाड़ियों और पेड़ों के बीच कभी गाची और हिरन नमूदार होते तो कभी जंगल उन्हें छिपा लेता। मोहन हाँप गया, वो अपनी कमीन गाह में रुक गया। फूलती हुई सांस से उसकी झिल्लाहट और भी बढ़ रही थी। जैसे ही हिरन एक बारगी नमूदार हुआ, मोहन ने निशाना लगाकर उस पर बंदूक दाग दी। गोली चली, सारा जंगल कांप उठा। दौड़ते हुए कदमों की आवाज से सूखे पत्ते कलेजा पीटते रहे और फिर मुकम्मल सुकून छा गया। शिकार बहुत दूर नहीं था। मोहन ने थैले से रस्सी निकाली और जल्द जल्द कदम उठाता वहां पहुंचा। जंगल में बंदूक की आवाज ने तन्ना आदिवासी को खबरदार कर दिया था। उसने दौड़कर सुपरिंटेंडेंट साहब को खबर दी कि सेंचुरी में रहजन घुस आए हैं। सुपरिंटेंडेंट साहब फौरन अपने अमले के साथ जीप में मौके वारदात पर पहुंचे। अरे ये तो तन्ना की गूंगी छोकरी है, एक अहलकार ने जिसकी दराज दस्तियों से गाची बच निकली थी, टॉर्च की रोशनी में गाची के सर जिस्म को शिनाख्त करते हुए कहा। ये साली रहजनों से मिली हुई थी हुजूर, पोचिंग में उनकी मददगार थी, मुझे तो पहले ही शुबा था।
1: मोहतरमा राफिया मंजूरुल अमीन से अभी आपने उनका अफसाना सुना, जिसका उनवान था महबूब। उम्मीद करते हैं कि अफसाना आपको अच्छा लगा होगा, यानी अफसाने की जो सिंफ है वो आपकी महबूब सिंफ अब तक तो बन ही गई होगी, यानी पसंदीदा सिंफ। ओके, तो चलिए अब प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनवाते हैं ये गजल।

0: सबमिन अभी आप गजल से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। ये था आज का प्रोग्राम अदब नुमा, बिल्कुल अदब जैसा, अदबी सा। फिलहाल सबिहा को दीजिए इजाजत, जल्द होगी फिर मुलाकात। खुदा हाफिज।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम अदब नुमा, पेश कर रही थी सबिहा फजल। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव से 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशियात जारी है। लीजिए सुनिए फिल्मी नगमे, फिल्मी मौसीकी का आगाज कर रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। एक नजर फिल्म के इस नगमे से।

जबरदस्त फिल्म का ये जबरदस्त नगमा सुनिए, किशोर कुमार का गाया हुआ नगमा निगार मजरू सुल्तानपुरी, मौसीकी आर डी बर्मन की।

0: कर लूं कहीं झलक ही।
1: एक बार मुस्कुरा दो फिल्म का इनाम आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। मौसीकी ओपी नैयर की थी। और लीजिए अब सुनिए इसी दिलकश आवाज में एक और नगमा, फिल्म है दिल्ली का ठग।

0: मेरी जूती से।
1: जूता पॉलिश करेगा, आह जूता पॉलिश करेगा, लेकिन तुम पर मरेगा। चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो

0: दुनिया में हम जैसे आशिक भी कहाँ होते हैं।
1: अरे वाह रे मजनू,
0: लैला लैला करेगा लैला, ओ लैला लैला लैला करेगा, ठंडी आहें भरेगा। चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तुम

0: अभी यूँ ना सताओ हमको, हम जिए कैसे भला ये तो बताओ हमको।
1: डूब मरो,
0: डूबेगा नहीं तरेगा, डूबेगा नहीं तरेगा, प्यार से हम नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो मोहब्बत करेगा।
2: यह है अन्नदाता फिल्म का नगमा किशोर कुमार और सबिता का गाया हुआ।

0: बाजू बाबू समझो इशारे और पुकारे।
1: यह चलती का नाम गाड़ी फिल्म का नगमा किशोर कुमार और मन्ना डे का गाया हुआ नगमा निगार मजरू सुल्तानपुरी मौसीकी एस डी बर्मन।

0: sa pu chuba che bacha juya samse ga ta waste bi do nga tis kam bacha waste pre mo nga ta da ni e waste re nga ta nga ngati mobile chak po sa ya nga tis solar chi vi bi na ka to adu nga tis kam bacha do nang khong chi chi zren duk sar ki ti zan po nga ta nga de sa bro mai ne mo nga ta zan po nga tis lencha food po nga tis sa ka ti ka tap cha nga ta reuse cha cha adu chola khong sustainable food po zren duk do na healthy life जब इंसान हेल्दी होगा तो ऑब्वियसली गति इन्वायरमेंट हेल्दी चल दो ना खोज आधे लोग चीक नहीं सीधी जरूरत हो कि गा गा चीज सुनिए लोग आते तब्दील को मार को शायद चेंज को मार चलो जरा चिची खोज यूज जरूरत हो या चेंज इन डिमांड हमेशा गतंगा ची डिमांड ची कहते जान ना कहते यरी आधे नो डिमांड पे चेंज बचा चिया दरमाना दे प्रोडक्ट पे यरेज इस्तेमाल बचा खोचा ताकि खुए यूज पो यंग दोबारा यूज शो खुए इन्वायरमेंट असल में छो खो छा मैं कहता हूँ चुआ या दरें अदांगा सबसे फेमस वर्ड चीनी से जो सर्कुलर इकोनॉमी जरे कि आदो दोबारा जोक से गति चौक जरूर दो गति डिमांड पे आना जा दिया चौक से चौक गति देखे चेंज इन सप्लाई अगर बना खची की डिमांड पे तंगाते इसको सप्लाई बना का तो अदे गति चेंज क्यों जा मिसाल की अरे चीज शीताना का तो गिलास पो दीफ या प्रोटेक्शन पो पैकेट पो मना छो पैकेट अदे पैकेट पहनो यार अगर बना का तो प्लास्टिक ना बहुत सारी चीजें जिससे मना चीज पो सुन से कचरा मना खिमे अदो जति चीज ना गति डिमांड पे बचा दो ना गति जो चेंज इन पॉलिसीज गवर्नमेंट एक गचुक पॉलिसी कति हो ना कतो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जा ताकि देखा गता इन्वायरमेंट का असर में बचा दियो गति मिशन ना भी आनो तफसील दी नहीं होंगे
1: गुलाम साहब जैसे मतलब कंजप्शन एक सप्लाई इंक्रीज बसे जैसे की मतलब सप्लाई ना डिमांड पे कंगते असर कंट्रोल बसे दी माइंडफुल कंसेप्शन गति जिंदगी चॉइस पो जैसे कि गतिस बिजली बचत बेत गते छू बचत बेत गते गंदगी गते कम पींगे त्यूस माहौलियात का गचुक असर से सचिन जो मिल ला गते सुनसे गति हरका दिन जो गते स्वच्छ भारत अभियान गते लामा दूर जाना प्लास्टिक चिन्ह तो ने डस्टबिन है तो चना ड्यू साम से असर से जो गति माहौल हिफाजत कर जो
0: कसे जो ड्यू सबसे इंपॉर्टेंट है जो दी थीम पोखरा दिया है दरे गता दी मिशन लाइफ पे अनुक पहला हमारे गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसी बनता था ये सब हुआ गज यहाँ पहला जिंदगी का कि प्रो प्लैनेट्स फॉर पीपल दरे गति लोग ही कम्युनिटी मोबिलाइज बचा इंडिविजुअल मोबिलाइज बचा ताकि रे ना रे ना गति कम्युनिटी गंगमा दियंग तो इन्वॉल्व छा आखिरकार चीज पो गंगमा इंसान इस बचिन गता मिंदा रे रेस बचिन गंगमा महस हाई लेवल के चेंज छा जरूरी मेन की गते रे ना रे दरे यरी दी हिसाब पे कदु खोए जैसे कि यारा गोखरी का गता एनर्जी जरे सबसे गता दरे एनर्जी कंजम्पशन पो गता माने किमो चिया जमन गता छक्से छक्से चीज इन ना गति एनर्जी के लेने दो चाहे गता ओती फियाइन गता जन सोलचे फियाइन गता ग्रंगमे फियाइन एसी या चाहे गति डोनमे फिया हीटर यो छोटे से छोटे हर चीज जो आजकल रोजमर्रा गति जिंदगी अनुकूल में दोन गा में एनर्जी जो है तो गति गोकरी गाते एनर्जी से बचे एरिज मोज दे दी का कि गता छत ना गेरी कमरे अनु गेरी बिजली और ऑफ से चाचा यारा जरूरत में तो एरिज यारी गा एनर्जी ची शीन पंखे की दो बन बस चाचा हीटर छीन ना का तो यारा दी जरूरत का तो मैं ना दो बन बस चाचा दो ने हम वो गता कुछ रिवेनेबल एनर्जी से बात जो दो गता डुलन दुख और जैसे कि गाते सोलर एनर्जी दो गाते इस्तेमाल बनाएंगे अंचा फिर भी हम खोया गता रिलीजियसली यूज बचा गाते माना गचुक ची बना का तो जितना हमें जरूरत है उतना हम यूज करें बाकी जो है हम सेव रखें जिससे हम सस्टेनेबल वही कहते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमी ब्याज चलो यार छू ना कहते गार यारे छू ना कहते यार जरूरत यारे छू इस्तेमाल बचा बाकी यारे छू मामो फॉर्म ही पहुंचा दिया ना सिर्फ दिया सकमा आता महदूद मिलू छा ये ट्रांसपोर्टेशन एंड समथिंग एनर्जी वेस्ट जैसे कि गतंग मिंदा चिची की कम से कम 5 किलोमीटर खुरान सा डोले दो हालांकि खुए गाड़ी जगह लोग मिंदा 5 नफर को सीटी का खुरी छाया छा ना कहते एनर्जी चाहे पेट्रोल इन चाहे डीजल इन जो भी होगा गति कंजम्पशन पर मना ज्यादा भी नहीं दे फिर यहाँ से कार पुलिंग जरबान साइकिल जरबान हर चीज आना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दो दो चीज उन इस्तेमाल बचा जिससे हो सके कि गति इन्वायरमेंट बचे छे गति रिसोर्स बचे छे جسے ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو ہمارے ساتھ ترقی ہوگا تو ہم آنے والے فیوچر کے لیے بھی کچھ سوچے دی جتی آتا چیز سنی کا چھتے چھتے چیز سنی کا آتا نظر بھی کوشش دوں.

0: Tashi Holland sir, ta di ano yaran ata zar ki mission life ha COP26 2021 ano di idea present bas princess. Kaza. Chana international climate action na ta zar conservation ika.
1: Bishop.
0: Dius gatu asar jita ano ju ya di impact po chang thon na ta med internationally.
1: Bilkul ju diu ngata COP26 si den yano ngata United Nations climate change si esa pika kons actual 2021 analysis. Chia zar mana chiz zar na kato ngata ha gar inna ka to industrialization mana zyada chit mo chya industrialization mean ngati chom se ngati shite jitte bhi hum product use kar raha hai beshak ultimately wo sab ek ngati industry se anal dan chit industry se anu dan sana chom se ngata carbon produce aur te phya ngata har cheez la ngata madde nazar rakhte hue ko jis ki decarbonization zare carbon po thoda sa kam bacha adhi zati cheez po ek khuriana start ho zare ja dekhna ko diya ko yanu main jis ki public participation bahut important hai chota chota mi sa gai hissa ngate andi anu chupo ngati environment la ngata las bachin zare jese ki ngata ngati ladakh yanu ngata ngadare ut ladakh administration anu dulone ki gaon साफ शख्चा या गति गाँव है चाहे इंडस्ट्रीज जो ना करते दे इंडस्ट्रीज लेवल पुकड़ियाँ ना क्लीन एनर्जी जर चाहोगे तो इस्तेमाल बचा या दोने अलग के यारी रिसोर्स पोत ना करते और गसुक चुबा सोचना लिमिटेड रिसोर्स का तो इस्तेमाल बचा कंजम्पशन पोगा तंगा गति हिसाब ची कलें चाहे एक्स्ट्रा लेन मिलें चाहे देव या गति दरे यूटी लदा है ना गा तंगा दिचिक 2026 में हम जैसे कि गति यूल लजर ना करते स्वच्छ गाँव सुरक्षित हवा और पानी को सुरक्षित रखने के लिए एक स्वच्छ गांव का होना बहुत जरूरी है जरे दियो गाती दरे लदा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ प्रणाम डुल रही जुआ दो मेन मांगाती हर चीज जो है गाती COP26 यानी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज 2021 को पूरा अच्छी तरह से गति दरे लदा है इम्प्लीमेंट चेंज चेजर में प्लांटेशन ज्यादा बढ़ रहा है क्लीनेस ड्राइव ज्यादा चल रहा है दिया इनको लेके लास्ट ईयर 2025 जमीयत उल उलमा इस्ना शेरे सदर जनाब शेख नजरुल मेहती ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव उठाया जो है क्योंकि मैं उस बहसियत रिप्रेजेंटेटिव अल हिमालया ग्रीन मिशन और रिसर्च सेंटर क्योंकि हम भी उस कॉप जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था उसको लेके हमारे गति यूटी लेवल का चाहे एल जी बोला शेख साहब सब उन लोगों को इसको एंडोर्स करके आगे ले गया ताकि गति लेवल पे लोग हमने 1.27 प्लांटेशन लगाया उनमें से करगिल पगामस पूरा गंगमस ताकि उसका सक्सेस रेट भी इतना क्योंकि लद्दाख लेवल पे 50% सक्सेस रेट होना भी बहुत चैलेंजिंग है मगर अल्लाह की फजल और करम से हमें उनमें अच्छे सक्सेस रेट मिला और सबसे पहले इस बात को नजर रखते हुए क्योंकि यहां पे कम्युनिटी मोबिलाइज होना इंडिविजुअल मोबिलाइजेशन जरचाओ दो निमान सख्त जरूरत होती और उस वक्त 2025 से जब से हमने ये प्लांटेशन ड्राइव किया उसके बाद जो है अभी गती रहनो इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन का स्टार्ट सॉन्ग कम्युनिटी का मोबिलाइज सॉन्ग हर जगह पे उसी टाइम जिस टाइम हमारे पास एक सीजन होता है प्लांटेशन का उस वक्त लोगों का डिमांड होता है कि हमें अलग अलग पौधे चाहिए हमें सैपलिंग्स चाहिए इस तरह की डिमांड जो है वो आना शुरू हो गया सर
0: G20 तरबीस एंड रिलेशन प्राइम मिनिस्टर इंडिविजुअल इनिशिएटिव गेमिन इंडिविजुअल बिहेवियर चेंज स्वच्छ भारत अभियान जरे फॉरेस्ट यूली तांग से फॉरेस्ट सफाई बा दी सिस्टम पो खों इस शुरू बास छन एरा गचु सर जो इंडिविजुअल लेवल के ने खेर इंटरनेशनल लेवल के लेप चुस चल ची इंपैक्ट यू चु दी
1: जबरदस्त यू दरे एक नता दरे यारे हम पहले कब उसकी सिवा संकल्प अभियान जो है गति 17 सितंबर ऑनवर्ड्स डूलिंग जू 17 अक्टूबर संकल्प तो इसमें दिया मकसद प्रोग्राम पिनकी मोदी जी का जो एक 25 ईयर्स अब जो सर्विस रहा है एज ए चीफ मिनिस्टर हो या एज ए अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो देखिए उसने वही बोला कि जितना भी हमने सिवा किया है तो उस सिवा में सिर्फ यहां तक नहीं उसमें आपने उसने क्लीनेस ड्राइव यानी स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर जो है 2014 से ही उसने स्टार्ट किया उस मिशन से अभी स्वच्छ भारत का हर जगह पे जैसे कि ओपन डिफिकेशन जरेगा तीर जितना मी गंगमा बाहर इंडिया उस गोवा अचानक तो बाहर अच्छा अभी ओपन डिफिकेशन जो है वो हमारे पास जीरो पे पहुंच गया जीरो पे 6000 बने क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ गता क्लीनेस तक जाडू तक महदूद नहीं था उसमें हर जगह पे जहां जहां पे पब्लिक आना जाना होता है वहां पे पब्लिक टॉयलेट बनाना होता है और आप हर जगह देख सकते हैं वो हमारे चाहे आरडी डिपार्टमेंट हो या बाकी सारे सपोर्टिंग बाय डिफरेंट एनजीओज जो है हर किसी ने सपोर्ट करके

0: उसको इतना आगे तक ले गया। अभी जो है इंडिया जो है ओपन डिफिकेशन जो है वो जीरो पे पहुंचा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद आपने बताया कि G20 जो है हमारे 2023 में यहाँ पे इंडिया में ही होस्ट हुआ न्यू दिल्ली में, जिसमें हमारे बहुत सारे लीडर्स आए, G20+1 भी आ गए। तो उन्होंने एक सबका था कि हमें जितनी तरह से अपने इन्वायरमेंट को बचाना है, सेम जो अभी हमने रिपीट किया जो COP26 वाला जो मिशन लाइफ वाला, उसको हमने आगे कैसे एंडोर्स करना है। उसको एंडोर्स करने के लिए सबसे पहले पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या हाई लेवल पे हो। और उसके बाद जो है उसको फाइनेंशियल सपोर्टिंग की जरूरत है, इंटरनेशनल कोलेब्रेशन की जरूरत है, जैसे कि बैन अवी तरह का सगल लखतुत्तों से गसुक बसीदियों के लखर चीन जरे, इनमें बहुत अच्छा काम ले गया। तो उसमें एक वर्ड्स आया था सर, ट्रेवल फॉर लाइफ जरे। ट्रैवल फॉर लाइफ जो है ये मोदी साहब ने भी वहाँ पे उसका एक विजन था कि हमें जहाँ जहाँ पे हमारा टूरिज्म जाएगा, उस टूरिज्म में जो एक इंडिविजुअल टूरिस्ट का जो आपने बोला लाइफ बिहेवियर कैसा होना चाहिए उस डेस्टिनेशन को लेके, तो उन्होंने बोला कि ट्रैवल फॉर लाइफ वाला एक मिशन हम स्टार्ट करते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने भी रखा, जिसमें जहां पे भी हो, जिस डेस्टिनेशन पे भी हो जाए, वहां पे उनकी क्लीननेस का ख्याल रखना है, वहां पे जो उनकी वाटर हुए जो चीजें जो है किस तरह से उसकी वाटर बॉडीज को हमने इस्तेमाल करना है, बहुत सारे एक सस्टेनेबल टूरिज्म जो भी इवन की टूरिस्ट गाइड होगा वो उनको अवेयर करेगा, उस एनवायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए वो जो है टूरिस्ट वहां पे जाएगा, जिस जिस टूरिज्म को वो हमारे लद्दाख और करगिल के लिए रेलिवेंट है सर, वो वहां पे उस टाइप जो हमारे जो 20+1 पे हुआ था हमारे न्यू दिल्ली में, उसी वक्त उसको भी हमने अडॉप्ट किया था
1: सर, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाया।
0: हाँ, नेशनल
1: पहुंचा सर। जो मिशन लाइफ मतलब मैं एक धरे दे नहीं सोच सोच देगा था इंटरनेशनल एक लेवल एक कैंपेन चल रहा ना जिस यहाँ गत्सु का मदद भी नहीं जो दी कैंपेन बॉस मतलब प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव में ना गांधी गवर्नमेंट ने साथ कर लाज बचाए जो छाना गत्सु मदल से लेवल जो की छू गए वाटर कंजर्वेशन इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन वेस्ट मैनेजमेंट मोबिलिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सब दूनिका गतु का इम्पैक्ट है जो दी मिशन लाइफ स्लोगन पर
0: बिल्कुल जो दरे दिए साहब पे का दरे मोस्ट की सिर्फ कंपेन या अवेयरनेस अपना मेहदूची डिस्पेंदू या सिर्फ दे कहा था जरचिन अदोवा अवेयरनेस प्लस एक्शन प्लस मेजरमेंट प्लस फीडबैक, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है एनवायरमेंट में। सिर्फ अवेयरनेस जो है लोगों को अवेयर कर देता है, बाकी अवेयर हर किसी को हो जाता है, एकदम नॉलेज मिल जाता है, हाँ जी क्या न्यूज पे आ गया रेडियो पे, बट अल्टीमेटली वो चीज ग्राउंड पे देखना चाहिए। जैसे कि हमने आपको बताया कि उसमें एक मेजरमेंट यानी गचुक बसे ये सब कुछ करना चाहिए, जैसे कि आपने बोला वाटर यूज, वाटर को आपको कैसे पता चले कि यहाँ पे कितना वाटर यूज हो रहा है, तो उसके लिए हमने एक रखा कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल कि हर डेली कितने परसेंट कितना पानी यूज करता है, जैसे कि उसका पीना होगा, उसका खाना कपड़ा वपड़ा धोने एक इंडिविजुअल गाड़ी धोने तक, ये एक पूरा डाटा आ जाता है जो है। उसके बाद हमारे यहाँ पे टूरिस्ट आता है, तो सेम टूरिस्ट वाला का भी कितना हमारे पास गसुओं के इस्तेमाल से इम्पैक्ट पड़ता है। सेम थिंग आपका वाटर के बाद एनर्जी पे आता है कि एक इंडिविजुअल कितना एनर्जी कंजम करता है, तो एक इस तरह की एक डाटा जो है हमारे पास होना चाहिए, जैसे कि एक इंडिविजुअल के बाद एक हाउस होल्ड कितना एनर्जी कंजम करता है, उनमें से वेस्ट कितना होता है। सेम इसी तरह वेस्ट मैनेजमेंट का भी, एक इंडिविजुअल कितना कचरा जो है वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसी तरह द्यून गंगमा अधिस जति का गतिस ठीक ठाक तरीके का गतिस मैनेज बसे दो गतिस जैसे कि कस बिल्कुल एक डैशबोर्ड चेंज हुआ नतीजा है कि वो एक आपके इंस्टीट्यूशनल वे से एक स्कूल में एक डैशबोर्ड होना चाहिए। डैशबोर्ड पे आपको पता चलेगा कि आज जो है कितने परसेंट आपका बिजली यूज हुआ है, पानी हुआ था, वो एक स्कूल में भी आप बोल सकते कि मेरे स्कूल में आज इतने लीटर हमने पानी जो है वो टंकी में डाला था, मेरे स्कूल में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से मेरे यहाँ पे इतने पानी आ गया, तो वो आप कर सकते कि इंडिविजुअल पे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपका वेस्ट आपके पास इतना आ रहा है, तो 100 बच्चे पे डिवाइड करो तो एक गचुगा भी गुजरे। ऐसा डेज में सिर्फ आपकी स्कूल्स में होना चाहिए, रेस्टोरेंट में होना चाहिए, आपकी होटल्स में होना चाहिए, जहां जहां आपका है। तो इसीलिए सर एक हमारे लद्दाख में मिशन चल रहा है सर, मिशन खुरयुक जरे, वो हमारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड ने किया है।

0: तो उसकी अभी मेरे रिगजिन जी उससे भी बात हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभी तक 300 स्कूल लद्दाख में एमओयू साइन किया हुआ है सर। जितने भी इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहां पे उन्होंने एमओयू साइन किया है, और मिशन कुरियुक नाम का वो काम भी चला रहा है जिससे जितने भी होगा आपका वेस्ट मटेरियल हो ये सबों को सिग्रीगेट कैसे करना है, जैसे कि प्लास्टिक को अलग से, शीशे को अलग से, कपड़े को अलग से, तो इस तरह से जो है अभी हमारे यहाँ पे काम होना शुरू हो गई सर।
1: मसी जो गोलाम साहब था मतलब दरे मतलब पहला तो जो मिशन लाइफ इस कॉल ला गवर्नमेंट ए इनिशिएटिव आता है शुरू सों या इंटरनेशनल लेवल के चीज़ से लेकर दरे चाना दरे जो मिशन लाइफ ही यहाँ चीज़ हो जुला दाख ना करके लेने मदद नज़र खुसूसन दिन आती इन्वायरमेंट पे रहा पता फ्रिजाइल इन हाँ छुई यहाँ आता माना रिसोर्स मान सुनते जो एल्टीट्यूड पर माना छो हाँ हाई और बिल्कुल गत्सु का दियो चैलेंज ही गिन जो माता हाँ लिमिशन लाइफ पो इम्प्लीमेंट बचाओ चैलेंज ही इन हमें या नती मद्देनजर गत्सु का दियो फायदा माने जो और नती लोकल कम्युनिटीज ना विजिटर इनका सऊदिया ने कंट्रीब्यूट बाइन चाहिए
0: बेशक सर, ये सबसे जरूरी, क्योंकि हिमालयन रीजन एक टाइम पे वाटर बॉडीज के लिए सबसे अच्छे माने जाते थे। मतलब चेयर बना नाती फेची उत्पीन जबर हमारे पास बहुत सारे ग्लेशियर्स थे, तो ग्लेशियर्स होने के साथ साथ वो ग्लेशियर जो है हर साल अच्छा खासा हमारा रिचार्ज भी होता था। मतलब कम से कम हमारे जो मतलब हम बोलते थे 4 फुट 5 फुट वो आता था, वो हमारे लिए रिचार्ज होता था, और ग्लोबल वार्मिंग का कोई असर हमारे पर नहीं पड़ा था। इवन कि क्लाइमेट चेंज बोलता है, ग्लोबल वार्मिंग बोलता है, ग्लोबल वार्मिंग का अब असर पड़ गया सर। लद्दाख का अभी जितना भी आपने देख रहा है कि हमारे ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होना बहुत शुरू हो गया है, और मेल्ट होने के बाद जो है जो छुमिक जरे दे
1: बिल्कुल
0: छुमिक नदी हर जगह पे आता है, छुमिक बंद छुमिक बंद से मल्ला पॉइंट के हर किसी के लिए कोई एक सोर्स नड़गोज दे जो आता
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जहां से हमारे उसके लिए पानी आए। तो हमारे लिए सबसे पहला लद्दाख जो है इस वक्त सबसे चैलेंजिंग फेज पे इन्वायरमेंट को लेके दे फिया नते यरेस जस्दी का नतंग एक फ्रजाइल एनवायरनमेंट है, यो हमारे पास हमारे ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, हमारा वाटर सिक्योरिटी बहुत रिस्ट्रिक्टेड
1: लिमिटेड
0: है, इसी की वजह से सिर्फ ये वाटर की ही वजह से हमारे एग्रीकल्चर पे असर पड़ रहा है, हमारी ग्रीनरी पे असर पड़ रहा है, हमारे प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ रहा है, हमारा लाइफस्टाइल हर चीज पे जो है हमारे लद्दाख का
1: इसका
0: असर
1: असर
0: पड़
1: पड़
0: रहा है, वो सिर्फ छोटे से पानी की वजह से। उसका भी बहुत सारे असर देखने को मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है कि हम जो है अभी सीधा जो एक लद्दाख जो एक ट्रांजिशन फेज पे आया है कि हम ज्यादातर कंस्ट्रक्शन पे फोकस कर रहा है, हमारा इकोनॉमी जो है वो सिर्फ सर्विस सेक्टर या हम मैन्युफैक्चर सेक्टर में बहुत जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट में भी बहुत असर पड़ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं सर, जो पुराना इरिगेशन कनाल्स है वो सब अब पूरा खत्म हो गया,
1: बिल्कुल
0: जहां जहां पे इरिगेशन कनाल्स होते थे आज वहां पर रोड बन रहा है,
1: पानी ही नहीं है
0: पानी ही नहीं रोड बन रहा है। तो रोड बनने के बाद जो है हमारे पास जो है जहां जहां हमारा ग्रीनरी कम होगा तो ऑब्वियसली हमारा वाटर साइकिल में भी बहुत
1: असर
0: सारे असर पड़ता है।
1: पड़ेगा
0: अगर आप लोग हम बोलते हैं ना साइंस और साइंटिफिक तरीके से, जहां से आपका ग्रीनरी ज्यादा होता है वहां पे आपका वाटर साइकिल भी अच्छा होता
1: ज्यादा
0: है,
1: होता है
0: और वहां पे प्रेसिपिटेशन भी अच्छा होता है। और आप हमारे एक आपका नहीं ये तो एक लेमेन और आम आदमी नती युल्ला दुखन सा कोई
1: प्रॉब्लम
0: प्रो हाउ वेन यू कि नता लो फलान चीजों से छुका
1: है
0: नहीं
1: कम
0: होता ओ
1: बिल्कुल
0: चेयर बना नता नती लेवल पे का वाटर साइकिल पॉन्ग कम सो ग्लोबल वार्मिंग पॉन्ग हर जाना का तो नता छी दिया सर पूछे नहीं जुया
1: मसी जो गुलाम साहब चाह नता स्पेरा हम मोमो सो जो ये मिशन बारे में दमो समझ जो खसपा बसे चाह ना आखिरी के जो यार दिया मोल सकी नती स्कूल्स जवान लोकल बॉडीज सुन हाँ नती इंस्टीट्यूशन सा जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं चाहना कम्युनिटीज गंगवा लोग से नते जी मिशन लाइफ पे का गसो नता कंट्रीब्यूट बाइन चाहिए जो पहला जी जो चाहना यंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज गस लाइक क्रिएट छचा इन जी मिशन लाइफ पर बस आई
0: कसा बख्शी जो सबसे पहला यार जिसकी नता ngati gachuk different different institutions chut ngati ade institution ni involvement nang ngata de an khongi lakthu de mang ata man zaruri in kyunki ngata sabse pehle ne institution ngata zaruri sunde jo sabse pehla ngata educational institution ni ngata shuru bana ga do sabse pehla ngata schools chut schools jo hai na ngata ghar cheez ni ngata sabse buniyad pungati school and structure jo dare schools anwa ngas yara pehla as ki

0: मिशन कुरियल जरे को इस एमओयू साइन बस दो ब्या तो लांग अति दरे हर स्कूल यानो सबसे पहले फ्रॉम ला अवेयरनेस या जरूरी दूसरा अवेयरनेस के साथ साथ एक्शन को इस आदि चीज जिससे हम आर थ्री भी कहते हैं आर थ्री मतलब वो रीयूज रिपेयर एंड इस्तेमाल बचिन गचुक बस दो चोचिन या दो स्टेचिन स्कूल इको क्लब यों मन जरूरी किचन गार्डन ऑलमोस्ट हर जगह दो स्कूल इंट्रोड्यूस चार किचन गार्डन छोटा सा एक तो फून ला प्लांट से बारे नॉलेज आ तीसरी बात जो है खुआ एक थोड़ा सा ग्रोथ हो दो इवन के रेस्टोरेंट होटल वाला जो है खुआ खुंती लेवल पे का कीचड़ गार्डन ची की उम्र हो दो ना सिग्रीगेट नती चाम से वेस्ट मटेरियल उड़ना का तो दोन मतलब अलग अलग वो खामा ना सिग्रीगेट बचा होटल पर खुद दे सिग्रीगेट बचा दो ना हर चीज यानो दूसरी बात नता दिन मिशन लाइव यानो चेंज हुआ थी हद से ज्यादा हमारे खाना भी वेस्ट हो रहा है वो भी एक मिशन लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है जैसे कि हम 20 बंदे के लिए खाना बनाना है 20 बंदा कितना खाएगा उसकी जगह पे हमारा जो है कम से कम 50 बंदे का खाना हमारे से वेस्ट होता है क्योंकि अलग अलग बिल्कुल ये वाला भी एक बहुत बड़ा आता है जब ये एक तरफ से फूड सिक्योरिटी का भी एक हिस्सा है वो अलग टॉपिक है मगर मिशन लाइफ का वो भी एक हिस्सा है जो वो स्कूल लेवल पे भी बच्चों को हर चीज होगा प्लास्टिक जो है बच्चों को कम मिनिमल यूज करना है प्लास्टिक का क्योंकि बच्चे जो है कभी कभार प्लास्टिक का बोतल भी लेके आता है फेंक देता है हर जगह तो दून गांव स्कूल लेवल के इवन की यूथ भी गांव दिया इन्वॉल्व चार को शायद यूथ चेयर बना गाती यूथ ला एंटरप्रेन्योर जो है बिजनेस ग्रीन एंटरप्रेन्योर हो इन्वायरमेंट बना दो एग्रीकल्चर की तरफ से गांव दून छाचा तीसरी बात हमारे बिजनेस लेवल पे रेस्टोरेंट हो होटल्स हो हर जगह को इन्वायरमेंट दो तीसरा हमारा लोकल पंचायत LHDC है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है खुआ मिशन लेफ्ट ने वो लखथुत्ता से गाता आगे हो चाहे सिर्फ मिशन लाइफ जो है वो इन्वायरमेंट तक महदूद नहीं रहेगा अपने ग्यारह बस लाइवलीहुड का भी वो हिस्सा बन सकता है जितना आप ग्रीनरी लगाएगा प्लांट ज्यादा आएगा तो उसका जो प्रोडक्ट जो है वो अल्टीमेटली किसी लाइवलीहुड का रॉ मटेरियल बनता है दिया खुरांग अता एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरफ नतंग
1: मलाम साहब ता मना मता प्रोग्राम पे टाइम पर मम्मी सोचो सेवा संकल्प अभियान है न्यूज नता नॉर्मल सर्विसेज कने बियॉन्ड देन चिक दरे मिशन लाइफ इनिशिएटिव पॉन द सोर्सेस सर जो चले रे जस के नता गामा लोग से एनवायरमेंट स्ट्रांग लुक्स बचाओ सहज से लेवल के कंट्रीब्यूट बचाओ नती प्राइम मिनिस्टर मिशन पॉन हां स्वच्छ भारत अभियान जरे दी मिशन लाइफ वे कड़ी चिचिक जर बंगियन दा ता कड़ी चिचिक ना मेना नोने यंबो यंबो जान फ बस बिस लंगा ते जिगरेट बा गोशे
0: बहुत जरूरी
1: हां ता तो लंगा ते जिंदगी बचिन जरे जान जिंगा ते नियन मिसा पो वेस्टेज पो कम पिंचा गा चिचिक इन वेस्टेज इवन जिंदगी नो टाइम पो वेस्टेज मा दस
0: बेशक बेशक
1: ना दी मोबाइल लते दो फ्रुजा जान जिंगा ते टाइम वेस्ट
0: बिल्कुल
1: आता अमा गमा इन मोबाइल खोरे दो के प्राइम टाइम पे अनुगतस मोबाइल लता से दुपना चाम जनाति टाइम वेस्ट छु चाना दुन नो मेट नते लास बसे नते गेन मिस अप वेस्टेज पो काम बचो दिया नति मिशन लाइफ वी मकसद पो एंजॉय जो
0: बेशक बेशक
1: ओलाम साहब यरन दिया सिक्योर ते नची दी दी इंपोर्टेंट इनिशिएटिव का सेल्फ पो बसे नति मिमांग सुन ले हगो ता चा ला यरन उजु सेरे मुजे जो ध्यान यम बो नते दिन से सेवा संकल्प अभियान ने जो नति दी प्रोग्राम पो देखा थमा थोने यंग टॉपिक छि लंग यम बो यन तंग पतुचा देमन गचा इजाजत शर्त बो जजू खुदा ना सामान फगरे

0: मीडियम में 684 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी करगिल से बोल रहे हैं। सामीन, अब से लेकर रात 10 बजे तक आप हमारे नशियात मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज़ के अलावा मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़ पर भी सुन सकते हैं। हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। मीडियम में त्रुग्यान ये शुशबी नजबी किलोहर्ट्ज़, मीडियम में सोची नगब्यान ये शुशबी नजबी किलोहर्ट्ज़, दोनों अच्छी मोबाइल एप न्यूज सुनारिका जैस आकाशवाणी करगिल का नाजरीन हो तो वक्स बुद्ध तुसो गोंसुख दिरिंग जकपो अंगारू अक्टूबर इलजे चुकसुम दिरिंग फ्रत चुपायोपी प्रोग्राम जुबैस लाखुरी गजायती दोनों क्लिप से नची जुने सलाम पो फ्रत मचन सोशिक सख पचिक नल्ला दुआया प्रोग्राम सदाकत लागू जुगबेत दि प्रोग्राम रक्से कंगन मजद सखमा कुरानी तिलावत न तर्जुमाला मुल्खन पे इन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لفتحنا

दस सौ पैंतीस सदाकत प्रोग्राम यानी पिन मीडिया में कहना चाहिए आकाशवाणी करगिल कहना चाहिए कसे तंगा ची दिन फ्रेच चुपैतपी प्रोग्राम सिर पुना अस्के फ्रेच चुपैतपी प्रोग्राम खतुस पुला मजिद दक्सा फीतो को तुसो दगा मिनट सुमची का प्रोग्राम यान मजिद किसान वानी तुसो त्रुक न मिनट चौगे का लद्दाखी गजल रिक इन तंसपा लिपचुक इन

0: 5,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
1: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
2: बस यही पूछो वाई। रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक वाई आपको फ्रॉड से बचाए।
0: हमेशा पूछो WHY, वाई कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
3: میڈیم کنگ اچھس آکاش وانی کرگی لکھنا زینو دوست پہ خبر انہیں تھو سنسو کسیتا پرگی خبر انلا نین مزید

0: wang miru gyali. Tene ta chuma ta banche zwa penze wende chiang yang sonang korang patak po tila lusanok tene baki shkam zis kan sonpa. Tene nga jayang beres chude dugre kapse wura diale patak lusche se pia, kya mi cha se pia. Tene yang ta parwari tene na yang chusal zil.
1: Kujab siring pan mole tene diring ngerang jingspe sunska de degree mena a tus de tene ngerang jang tene nga ta ta lusse nga ston toko kazuk shik lus tene yang ta guntu si fia tene kazuk tal degree zate yo tene te tsang mesko la jipsal mola zats ngerang tene degree mena a tushes la yang lanchik nga jang iske चुकने तो जिसे जुले
0: जुले देने जाएंगे क्या यंग स्काप साथ
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका है।
3: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करें।
2: भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध धन प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को नहीं बदल सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर आज कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि एक विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन देश के युवाओं की क्षमता में बाधा डाल सकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है लेकिन उसे अपने कार्यकाल के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देश हित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
2: शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रांची में एक छात्र की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच करेगी और संस्थान में दिशा निर्देशों के पालन का आकलन करेगी। आयुष मंत्रालय ने त्वचा संबंधी बीमारियों के उपचार और प्रबंधन के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी के साथ योग को शामिल करते हुए मानक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य आयुष की विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में उपचार की प्रक्रिया को अधिक एकरूप बनाना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित चिकित्सा को बढ़ावा देना है। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाए।

0: दोस्तों सब पैंतीस आकाशवाणी दिल्ली का ना हिंदी ना अंग्रेजी खबर निरपिन मीडियम आकाशवाणी करगिल का ना जेरी न्यूज
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का सबक।
2: छोटी रकम से स्टार्ट करेंगे

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कह के क्या थक गया?
2: क्या हुआ?
1: नया किट बैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से कहो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करो, 30 दिनों में जवाब या कोई हल ना निकले तो CMS पोर्टल पर शिकायत करो। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चलें। लो आ गया नया किट बैग। RBI कहता है
3: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
4: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
5: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
6: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
4: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
6: आपका साइबर रक्षक।

0: एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही गाचो से लासना का तो दिया गोम्बा का तो लैंडमार्क को शुरू बेस कर ला
1: सबसे पहला ना आता सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां चिंगा दिया जबरजीत पिंसु फाइनेंशियल असिस्टेंट आता सिंजा फाइनेंशियल असिस्टेंट जबाना का तो
0: इमदाद है जो
1: इमदाद था सिंह के हर डिपार्टमेंट हर जिला पंचायत लकी भाई विंटेस सॉइल टेस्टिंग ले फेशिक फेसरी अपना इंतान दिया सबसे पहला ना आता चीज में रोजगार चांस हूं सैंपलिंग बा चार को जिंग मामे
0: चार को बिल्कुल
1: रोजगार शुरू सो देखना खो सबसे पहला फायदा खो ओदे लैंडमार्क की स्कीम की क्योंकि कारगिल सो शहरा गा जमीन चोदना पहला जुल तार गोशिन की गार धोई कना उसे क्योंकि दुआ वेदरिंग सो से मैंने ओदे कना स्वाइप पेन था कारगिल लताना का तो कारगिल अरे आर्श अमुमन एसल ना का तो खोन जेस्टन की कारगिल इस स्वाइल को सैंडी स्वाइल
0: सैंडी
1: सैंडी अति ज्यादा
0: ब्यासा
1: जरा मैंने यहाँ देखा क्रॉप लिमिटेड सो से अति तो वीट है चीन बार्ले है चीन मेन क्रॉप लताना का तो अब गति सॉइल पुस्ताना का तो गति का ज्यादा यंग जुब से ज्यादा क्रॉप चिक चंग छाचा इमकान ची चोशिक मेन क्योंकि सॉइल पर सपोर्ट बचा मेन मध्या इन देखा गाते काफी आता क्रॉप प्रोडक्शन बांग चीन लेकिन आता इन टर्म्स ऑफ आता वेजिटेबल तान वेजिटेबल ठीक छाचिन गाते अब दे साबिका गाते हूँ जैसे की कारगिल सॉइल पर भाई सबसे अल्कलाइन रेदु
0: बिल्कुल
1: क्योंकि रुधवा खरा अल्कलाइन इन इनसु
0: अच्छा
1: कार्बोनेट जैसे लाइम स्टोन जैसे ओदे का नखो वेदनी सो से उसलदान इनसु अब यहाँ अल्कलाइन पछाना का तो यहाँ फसल पो यहाँ से लिमिटेड सु
0: बिल्कुल
1: क्योंकि फसल खचिग एसिडिक घोषित खचिग अल्कलाइन घोषित क्योंकि अल्कलाइन साथ उगजरे अब इन में साफ पंगाते ज्यादा प्रिजर्व बचे जो इन में साफ एग्रीकल्चर ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम सुलचा अवेयरनेस तमचा दयोत खान मीन ला सपोर्ट बचा जैसे फर्टिलाइजर तमत पीन अब देंगे आता फर्टिलाइजर बच्चे ज्यादा अवेयरनेस पर ज्यादा तमर
0: बिल्कुल
1: जैसे ध्यान चिकचिक जैसे किन पर चिकचिक जूस काफी फायदा था उसको जैसे आती सॉइल टेस्टिंग लेब देना दो सॉइल फर्टिलिटी एंड हेल्थ टेस्ट दर्ज दो दरें आती है अब गुरबथा फेस
0: मैक्सिमम प्रोडक्शन पर ज्यादा बोगरे गवर्नमेंट
1: खुनती तब सिक्किम स्टूडेंट प्रोग्राम सुनियोत की उम्मीद होती आने वाले टाइम में खुद मैक्सिमम से मैक्सिमम देखना फायदा लें तो
0: बिल्कुल सर तना ध्यान यरस मॉल्स की ध्यान गवर्नमेंट इच्छुक ध्यान लाज डूल हजू यंग खोस आगे यंग लाज बेजर छाना ध्यान यरस दर जैसे कि यरस जिसकी फर्टिलाइजर खो खुरी बैलेंस का तमर क्वेश्चन हजू या मिसाल यरस जिसकी सा खची खुए दिन दाओ फीचर पु अल्कलाइन होचिन खचिगी एसिडिक होचिन हजू छाना ध्यान अचोक दर हतस गाचिगेस दी फर्टिलाइजर मकोल बा यदि यूज माबा खुरी ऑर्गेनिक लुदियो था जो दरिंग आदि बायो दिन दायो था चागलो दांगरे लो बियालो था जो नरलुत उदुन का तो कोलना का तो उदुन इस सॉइल क्वालिटी ठीक लुशा जिना या मिसाल फर्टिलाइजर तांग से ठीक लुशा जिन दिया चंग फरक से शाचिन में ऑर्गेनिक को ना दिन दिया कस
1: बल बिल्कुल जो सज्जाद साहब ऑर्गेनिक अगर यहाँ दे बारिश शेर उलताना का तो वेजिटेबल मिस जशन होस नॉर्मल चीन जो ऑर्गेनिक इंदर ऑर्गेनिक जमाना ओस सोस खेची का खो दो प्रोटेक्शन पर सोस इनकी खो ना फर्टिलाइजर यूज
0: बच्चा मैन बिल्कुल
1: अब पहला अगर आना इतु ना दो तीन साल पहला आती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस खो जिस पिंग हिटिंग इन में सब डिकम्पोज बोशिक रांस डिकम्पोजर यख से अच्छा दिन इतान उतु डिकम्पोज जैसी लुस्खा ने चीज गामा खड्डा जाता है सोते डिकम्पोज यूज बसे दो मेन्यूर बसे अस्के जी पे इंतज दो यूज
0: बसे बिल्कुल
1: अब जब भी मैंने सब पाता जो इसके फर्टिलाइजर बनाते हैं केमिकल लेबोरेटरी चोखन इन केमिकल है बॉडी साइड इफेक्ट या हार्मफुल छे काफी चांस अब लेकिन जाय खचिए आता फॉर एग्जांपल हर किसी मुमकिन छामित की खुश उधर लुत्फ खामा तैयार बुक टाइम जरिया जगह जर वजहत पर लेकिन आखिरी का ख्वा फर्टिलाइजर ही मदद ख्वा अच्छी बस यहाँ लेन मोशन लेकिन सबसे लखमो यार इस पेरा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लुत्फ मन मजे ऑर्गेनिक लुत्फ दंचा चल दंचा ख्वा चाह ज्यादा गोशा में मेहनत ची चाह में ज्यादा यहाँ जगीर गोशिन खड्डे गोशिन दिया चीज गामा डिकम्पोज ताम गोशिन डिकम्पोज
0: रूल चुपा
1: रूल चुपा
0: बिल्कुल
1: अगर रूल चुपी मतलब यहाँ चाह और गोशा में खुना कुदरती सॉइल पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होशिन
0: खाले बोले
1: बिल्कुल बंद बागोशन
0: बिल्कुल
1: प्लांट ऑर्गेनिक ना सबसे बेहतरीन इन में सब कोशिश बचा खासकर फार्मा साहस

0: शहर ना दी कलेक्शन चैम्बर पांच कलेक्शन चैम्बर पे आंगा चेस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन तांसे उसगो से बराबर बस उसगो से तांसे जैसा मोहला गांव में पंप पे गना बराबर छुछा गोशिन जरे गांव पोगोनी डिमांड है छुगे आले चाना दे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पोत मतिस खेरे पिन चाना एसवीडी खेरे ना खो रोड ची दिया ना कंस्ट्रक्शन ननिंग चुनयुत्सु दिया खो पता मसोमिन्सु चाना दे पाइप पोखेरे ना खो गना छापसे मेत्सु देखने दो कौन है वो टेकअप जो से ने कौन दो केरे ना कौन तीन लेवल का रेक्टिफाई जो ना या अंगता लोग पेनिक ट्रांसफर जो दे अजूर का लूस लूस पना दो डिले छाना गा चेस स्टेज स्टैंडर्ड का ना दो यंग रेक्टिफाई जो स्पिन दो यंग फिट छाना दक्षा यंग कौन दे यंग लास्ट फोटो लें दुगले दो छू ओदे डिस्ट्रीब्यूशन पाइप पो केरे ना बार बार दो डिस्टर्ब छेन लूस इन दुक ता दो कंस्ट्रक्शन पो कौन या मना पाइप पो थ्रू लूस ना कौन कंस्ट्रक्शन पो डुलचा में दुक छाना कौन दू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिका कौन रोड पो डिक पनांगा चेस पाइप गुनी कनेक्ट बेट जरका ने स्पेर एक नास गुंदे यंग अचेस कौन यंग चिट्ठी डिस्पिन कि भाई दी डिस्ट्रीब्यूशन आजो कुनी केरे ना यंतेस यंती लेवल का ठीक जो ना यंग अचा पेनेक ट्रांसफर जो से अची लेवल का ठीक जो ना दू ठीक छा ना दी पंप पो केरे ना फर्स्ट क्लास रोशिन ले और ये पंप पो केरे ना अची जबियर एफ इन सर या जबियर लमन फर्स्ट क्लास छो बेहतरीन ध्यान अंबिंग से इन एस आर पी का कमीशनिंग सक्सेसफुली सॉन्ग से इन और अगर चाहे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बो ठीक छा पब्लिक सप्लाई तंग मैं चाहिए
1: दिन में जनाब एडवली सब डिविजन लेफ्ट मोहम्मद रफीक यंता सल्पन एम्बोजर नितिन जल जीवन मिशन कोत्सिगी सोलर पामी स्कोरला छाना सोलर पामी दरे मिडुल भी ओजोर पो देना थोंदुक एसवीडी सुरुवेली छोसना और गेलम चिकफिये नितिनसुक छाना देनुक जल जीवन ही पाइबुन दे जातिया यों से छक्कन इंसुक छाना यों मितु सुनियानुक युलपान लर दियामा बिंदुक शोस्मो बसे और गेलम पोस्टो चुसे पाई बुन और देमो बसे यहां शो से अपना सोलर पंपो गुलचा जिंजरिंदु। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं वाइल्ड लाइफ वार्डन अंकित सर। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं सर आकाशवाणी करगिल में। तो सर अभी आपने नया चार्ज संभाला है वाइल्ड लाइफ वार्डन ऐसे वार्डन, तो सर लोग आपसे क्या उम्मीदें रख सकते हैं खासकर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट को कम करने में?
2: जो हमारा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है ये इश्यू इन रिसेंट ईयर्स में काफी बढ़ गया है
1: जी।
2: और ये जो टाइम पीरियड होता है स्पेशली सितंबर अक्टूबर, तो ब्राउन बियर को अगर हम देखें तो ये इसका प्री हाइबरनेशन पीरियड है जिसमें ये काफी ज्यादा फूड की तलाश में इधर उधर वॉन्डर करता है और हाइबरनेशन के नजदीक चला जाता है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस टाइम पे ज्यादा बढ़ जाते हैं
1: जी सर।
2: दूसरा तो कई सारे और फैक्टर्स है जिसके कारण जो हमारे ब्राउन बियर है इनका अपना नेचुरल हैबिटेट थोड़ा डिग्रेड हुआ है। उसके बाद जो हमारे अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है जिससे काफी सारे नए रूट्स और ब्रिजेस बन गए। पहले ब्राउन बियर जनरली रिवर क्रॉस नहीं कर पाते थे, बट अब चूंकि हमने मतलब ब्रिजेस भी बना दिए तो उसके सहारे भी वो नजदीक जो विलेज जो हैबिटेशन है उनके नजदीक आ जाते हैं। तो ये एक मतलब क्रिटिकल जो है एस्पेक्ट है कॉन्फ्लिक्ट का। दूसरा कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इसके लिए क्या कर रहा है, तो अगर आप देखें तो सबसे सिंपल सॉल्यूशन रह रहता है कि हमें रात में पेट्रोलिंग करनी ही होती है। हम टीम बना के 24/7 जो टाइम सबसे ज्यादा क्रिटिकल टाइम होता है जनरली, मतलब आप सब सोच ले 9 PM to 12 AM या 12 AM to 3, इस टाइम पे हमारा स्टाफ काफी ज्यादा सजग रहता है। तो उसमें वो गांव वालों के भी हेल्प लेता है, जो भी गांव में जो हमारे वॉलंटियर रहते हैं वो साथ में रहते हैं। तो टॉर्चेस और थोड़ा सा बेसिक जो मतलब सॉल्यूशन होता है कि क्रैकर्स लेके कि भालू अगर जैसे ही साइट होता है तो उसको मतलब दूर भगाया जाए। ब्राउन बियर जनरली बाई नेचर शाई एनिमल होता है, तो जैसे इसको ह्यूमन वो सामने एनकाउंटर होता है तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है, बट चूंकि उसको आदत लग चुकी है तो हम इसको लार्जर सेंस में कैसे रिजोल्व करें, तो उसके लिए डिपार्टमेंट काफी सारी चीजें कर रहा है। पहला तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हम तुरंत ले ताकि जैसे कंपनसेशन हो गया कि जिसको डैमेज हुआ उसको तो तुरंत हम पहले कंपनसेट करें। दूसरा जिसमें जिनके थोड़ा हाउस में खिड़की दरवाजे टूट जाते हैं तो उनके लिए भी इस बार हमने कैंपा में बजटरी एलोकेशन रखा है। हम नंबरदार से लिस्ट ले लेंगे कि किनके घर थोड़े से डैमेज हुए थे खिड़की और दरवाजे, तो उनको रिइंफोर्स करने में हम हेल्प करेंगे। तीसरा हम कोरल पेंस और बियर प्रूफ जो हमारे पेंस

0: 6, 7.
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

जरूरत के लिए पैसे। SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं शेख तजम्मुल। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम से खिताब, भारत के तरक्कियाती सफर को किया उजागर। वजीर दाखला ने दहशत पसंदी, मुनज्जम जराइम, मुनशियात, इंतहा पसंदी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे चैलेंजों से निपटने के लिए बाहमी कोशिशें करने पर दिया जोर। पूंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल

0: पर बारूदी सुरंग धमाके में लश्कर तैयबा कमांडर समेत चार दहशत पसंद अजान और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आइंदा दरबार मुंह के सिलसिले में एक मीटिंग में लिया इंतजाम का जायजा। अब पेश हैं खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की हुक्मरानी का बुनियादी उसूल अवाम को बा इख्तियार बनाना है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की तरक्की इज्तिमाई खुशहाली और सबको यकसां मौके फराहम करने पर मबनी है। वजीर आजम ने कहा कि रवां माली साल की पहली सैमाही में मुल्क की जीडीपी शरह नमू 7.8% रही जबकि जर मुबादला के जखायर 700 अरब डॉलर से तजावज कर गए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता दहाई में 25 करोड़ अफराद को गुर्बत से बाहर निकाला गया है। वजीर आजम के मुताबिक 2,25,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स मुल्क में सरगर्म हैं जिनमें तकरीबन निसप छोटे शहरों से ताल्लुक रखते हैं।
1: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि कौमी सलामती का दायरा फौजी सलाहियतों से बढ़कर होना चाहिए और इसके लिए साइंसी इदारों और मुसल्ले अफवाज के माबैन बाहमी इश्तराक का होना लाजमी है ताकि इख्तिराइयत को मसाइल के हल में तब्दील किया जा सके। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आज 66वें कौमी डिफेंस कॉलेज कोर्स की फैकल्टी और कोर्स मेंबरान के साथ बात करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के मंजरनामे में तेजी से तब्दीली आ रही है और नए चैलेंज उभर कर सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालिया महाज आराइयों से कम खर्चे वाली टेक्नोलॉजी की अहमियत उजागर होती है। द्रौपदी मुर्मू ने तहकीक तरक्की और इख्तिराइयत से मुतलिक स्कीम को दवाम बख्शने की जरूरत पर जोर दिया ताकि इख्तिराइयत और कौमी सलामती के माबैन रिश्ते को मजबूत किया जा सके। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत दहशतगर्दी के तहत जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि कोई भी दहशतगर्द नेटवर्क खित्ते में न पनपे और वह हमसाये ममालिक के खिलाफ अपनी सरगर्मियों को अंजाम न दे पाए। आज नई दिल्ली में बिम्सटेक के वज़राए दाखिला की एक मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत तमाम ममालिक की सालमियत और इलाकाई यकजहती की कद्र करता है और तमाम मसाइल को पुरअमन तरीके पर हल करने में यकीन रखता है। उन्होंने बिम्सटेक को इलाकाई सालमियत इक्तसादी तआवुन और मजमूई सलामती का एक कलीदी प्लेटफार्म करार दिया।
2: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है बल्कि हमारे युवाओं के जीवन हमारे समाज हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। ये एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है।
0: वाज़ेह रहे कि बिम्सटेक के 7 रुकन ममालिक हैं जिनमें भारत बांग्लादेश भूटान म्यांमार नेपाल श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान आने वाले दरबार मुंह के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया। दरबार के साथ जाने वाले मुलाजमीन को हर तरह की सहूलियात दस्तियाब कराने पर जोर देते हुए वजीर आला ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वह दरबार के मुंतकली के दौरान कौमी शाहरा पर ट्रांसपोर्टेशन मेयारी खुराक और तिब्बी सहूलियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाएं। वजीर आला ने अफसरों पर जोर दिया कि वह सिविल सेक्रेटरियट जम्मू और वहां की रिहायशी कॉलोनियों में मुलाजमीन के लिए मुनासिब अकामती सहूलियात खसूसी बस सर्विस मुनासिब सफाई सुथराई और बिला खलल लाजमी खिदमात दस्तियाब कराएं। मुतअद्दिद अफराद और वफूद आज सिविल सेक्रेटरियट श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात हुए और फिल्म साजी सन्नतकारी के बुनियादी ढांचे इलाकाई तरक्की तालीम और नौजवानों से मुतलिक अमूर पर उनके साथ तबादले ख्याल किया। मुलाकात करने वालों में एक फिल्म साज ओनीर एरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का वफद मुसन्निफ और समाजी कारकुन महनाज एजी नाडियाड वाला अन अकेडमी कश्मीर का वफद और एनसीसी डायरेक्टरेट जम्मू कश्मीर व लद्दाख के एडिशनल डीजी मेजर जनरल अनुपेंद्र ब्योली शामिल थे। वजीर आला ने उजागर किए गए मामलात को गौर से सुना और यकीन

0: दिलाए कि उन पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक बारूदी सुरंग के धमाके में लश्कर ए तैयबा के कमांडर समेत 4 दहशत पसंद मारे गए हैं। ये दहशत पसंद कृष्णा घाटी सेक्टर के नांगी टिकरी इलाके से दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। मारे गए दहशत पसंदों की शिनाख्त पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद विकास और मोहम्मद आसिम के नामों से हुई है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें और आकाशवाणी के दीगर प्रोग्राम आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। भारत ने एक बार फिर इस बात का इरादा किया है कि लद्दाख भारत का नाकाबिले तनसीख हिस्सा है और चीन का इस ताल्लुक से इनकार हकीकत को बदल नहीं सकता। लद्दाख से मुतल्लिक चीन के हालिया तबसरों पर मीडिया सवालात का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस ताल्लुक से वजारत दाखिला की जानब से जारी करदा बयान बजात खुद एक वजाहत है। वजीर अजम नरेन्द्र मोदी ने अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल किए हैं। इन 25 बरसों के सफर की कामयाबी जनसेवा से देश सेवा के उनके जज्बे से वाजे हो जाती है। इस सिलसिले में हमारी खसूसी सीरीज के तहत समाप्त करें अटल इनोवेशन मिशन से मुतलिक हमारे नामनिगार की यह रिपोर्ट।
1: अटल इनोवेशन मिशन मरकजी सरकार ने साल 2016 में नीति आयोग के तहत शुरू किया और इसका बुनियादी मकसद मुल्क में इख्तिरायत और कारखानदारी के कल्चर को बड़े पैमाने पर फरोग देना है। अपनी नोयत की इस अनोखी पहल के तहत 6ठी से 12वीं जमात तक के तुलबा के लिए स्कूलों में अटल टिंकरिंग लेबोरेटरियां कायम की गई ताकि वो 3D प्रिंटर्स, रोबोटिक्स और DIY को बरवकार लाते हुए स्टेम स्किल्स से रोशनास हो सकें। अटल इनोवेशन मिशन से मुल्क के कारखानदारी के निजाम में हायल मुश्किल और चैलेंजों को दूर करने में मदद मिली। स्कूलों के साथ साथ यूनिवर्सिटियों, तहकीकी इदारों, निजी और MSME सेक्टरों में कारखानदारी और तखलीकियत का जज्बा परवान चढ़ने लगा। इस मिशन ने कौमी सतह का ऐसा ढांचा खड़ा कर दिया जिसके नतीजे में मुल्क का इनोवेशन लैंडस्केप मयार की नई बुलंदियों को छूने लगा। सुहेल भट्ट, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर।
0: इत्तलात नशरियात और पार्लिमानी उमूर के वजीर ममलिकत डॉ एल मुरगन ने अपनी वजारत और राज्यसभा की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। वजीर अजम नरेन्द्र मोदी को लिखे गए खत में डॉ मुरगन ने कहा कि यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों के फर्जन से लेकर मरकजी वजरा की कौंसल में खिदमात अंजाम देने तक का सफर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज रहा है। उन्होंने कहा कि वो अब बुनियादी सतह पर वापस आकर पार्टी कारकुनों के साथ काम करना चाहते हैं। असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस पुलवामा की एनफोर्समेंट विंग ने आज निवा और रिंग रोड पुलवामा पर गाड़ियों की चेकिंग अमल में लाई, जिस दौरान 3 ड्राइविंग लाइसेंस मंसूख किए गए जबकि एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश भी की गई। स्क्वाड ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवरों से 56,000 रूपये के जुर्माने भी वसूल किये। इस दौरान राजपुरा पुलवामा में एक निजी ऑटोमोबाइल एजेंसी को गैरकानूनी तौर पर गाड़ियों की खरीद फरोख्त करने की पादाश में मुकफ्फल किया गया। डोडा जिले के भलासनी इलाके में आज एक सड़क हादसे के दौरान 4 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज मुआलजे के लिए GMC डोडा मुंतकिल किया गया और उनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। मरकजी वजीर डॉ जितेंद्र सिंह ने डोडा के जिला तरक्याती कमिश्नर के साथ बात की और जख्मियों के बारे में जानकारी हासिल की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मूलगीर मुहिम शुरू कर रहा है। इस मुहिम में तमाम अहल वोटरों के नाम वोटर फहरिस्तों में शामिल किए जाएंगे। इस मुहिम की शुरुआत 18 अक्टूबर को दिल्ली से होगी। महकमे तालीम के कमिश्नर सेक्रेटरी रामनिवास शर्मा ने आज गवर्नमेंट गिरदारी लाल डोगरा मेमोरियल डिग्री कॉलेज हीरानगर का दौरा करके वहां बुनियादी ढांचे और तदरीसी सहूलियात का जायजा लिया। तुलबा के साथ बात करते हुए उन्होंने उन पर जोर दिया कि वो मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करके मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा करें। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आज जश्न-ए-डल मौजू के तहत 3 रोजा वाटर स्पोर्ट्स मुकाबले शुरू किए गए। ADGP आमड नितेश कुमार इस मौके पर मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थे और उन्होंने इन खेल मुकाबलों का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आबी खेलों के 20 जुमरों में 15 अक्टूबर तक 86 मुकाबले मुनक्कद किए जाएंगे। MLA दिवसर पीरजादा फेरोज अहमद शाह ने आज कुलगाम जिले के खड़वनी इलाके में सखरसुम पुल का इफ्तिताह किया। ये पुल 6 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है और इसके चालू होने से इलाके में ट्रैफिक की गुंजानियत को कम करने में मदद मिलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमाने आला तनवीर सादिक ने आज शहर खास में

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समीन आदाब, आज का तबसरा लिए मैं शबीर उज़्ज़मा। मरकजी वजारत समाजी मनसूबाबंदी और सेहतियामा के सेक्रेटरी पूनिया सुलेला श्रीवास्तवा ने मुल्क की तमाम रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरी साहिबान के नाम एक हुक्मनामा जारी किया है कि वह इस बात को यकीनी बनाएं कि बीमार लोगों की बीमारियों के इलाज की तशखीस से जुड़े मामलों में टेस्टों और मुतलिक आलाजात की कीमतों और तकनीकी माहरीन के सर्विस चार्जेस से मुतलिक निरखों में शिफाफियत जाहिर कर सकें, ताकि इस बारे में अवामुन्नास में पाई जाने वाली गैर यकीनियत और इबहाम को दूर किया जा सके। हुक्मनामे के मुताबिक ऐसे मामलों से जुड़े तमाम निजी क्लिनिक मालिकान के लिए यह लाजिम कर दिया जाए कि वह अपने क्लिनिक में हर मुतलिक काम, इसके मुआवजे, मुतलिक आलाजात और सर्विस चार्जेस की कीमत के बारे में एक रेट लिस्ट आवेजा रखकर जरूरतमंदों का ध्यान इस तरफ फेरे, ताकि मरीज और उसके तीमारदारों को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। दरअसल मरकज की मुतलिक मिनिस्ट्री ने वक्तन फवक्तन इस सिलसिले में पैदा होने वाले इबहाम और गैर शफाफियत से पैदा होने वाले तनाजात का नोट्स लेकर गरीब और मफलूकुल हाल बीमारों की राहत रसानी का सामान पैदा करने में पहल की। मरकज की मौजूदा सरकार ने वैसे भी गरीब लोगों के मुफ्त इलाज के लिए गोल्डन कार्ड स्कीम चालू करके उनकी राहत का काम कर दिया है, मगर इलाज से

0: पहले तशखीस और जांच वगैरह के मामलात में गोल्डन कार्ड का तसरुफ इस्तेमाल में नहीं है। मरकज की मौजूदा मिनिस्ट्री के हालिया हुक्मनामे में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 और 2012 का जिक्र खास तौर से किया है, जिनके मुताबिक सेहतयामा के जुमरे में अवाम को मयसर की जाने वाली खिदमात के कम से कम मुआवजे की भी बात कही गई है। इससे पहले भी 2025 में हुकूमत ने इसी से मुतलिक मामलात को अवाम दोस्त बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी, ताकि इससे मुतलिक प्राइवेट इदारों को जवाबदेह बनाने के साथ साथ अवाम दोस्त भी बनाया जा सके। हुक्मनामे में कहा गया है कि इस सिलसिले में रियासती और मरकज के जेर इंतजाम इलाका जात में पहले से मौजूद सिफारिशात और मुरतब अहकाम की नफी नहीं होनी चाहिए, बल्कि दोनों अहकाम की मतलूब और मकसूद शिकों को रूबा अमल लाकर सेहतयामा का एक अवाम दोस्त शफाफ और जवाबदेह शोबा मसरूफ अमल रहे। बसूरत दीगर बीमार तीमारदार और लवाहिकीन गुनागुन मुश्किल से दूचार होते रहते हैं। जहां तक मुख्तलिफ प्राइवेट क्लिनिक और लेबॉरटरीज में फीस, मेहनताने, तशखीस और जांच पड़ताल में काम आने वाली मशीनों और आलात की कीमतों का ताल्लुक है, इसमें भी एक मसला पैदा हो सकता है, क्योंकि बहुत से प्राइवेट इदारे अपनी सर्विसेज और मशीनों को आला तरीन मयार का बताकर मसावी रेट के सरकारी हुक्म को उनके आईनी हुकूक की सलबी मानते हैं, जबकि मुशाहदे में आया है कि एक ही तरह के MRI टेस्ट के लिए कोई प्राइवेट लेबॉरेटरी 6,000 और 13,000 रूपये लेती है। बिल्कुल इसी तरह बीमारियों की तशखीस से जुड़े सैकड़ों टेस्ट के लिए तकरीबन हर प्राइवेट लेबॉरेटरी के पास एक अलग रेट लिस्ट है और हर कोई लेबॉरेटरी मालिक अपना मुंह मियां मुठ्ठू बने रहता है। इन तमाम हालात के पेश नजर तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की हुकूमतों पर लाजिम आता है कि वह मरकज के ताजा हुक्मनामे की रोशनी में सेहतयामा को गरीब अवाम दोस्त शिफाफ और जवाबदेह बनाने की सिमत में काम करने के लिए कोई दकीका फरोगजाश्त न करें। हम सब इस हकीकत से बखूबी वाकिफ हैं कि इस सदी के इस अशरे में ऐसी बीमारियां नमूदार हुई हैं जिनका नाम भी पहले कोई नहीं जानता था। इस सिलसिले में हालांकि डॉक्टर साहिबान भी हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं हैं, मगर बीमारी की वजह जानने के लिए तशखीस, जांच और टेस्ट के कई मराहिल से गुजरना पड़ता है, जिनके अखराजात गरीब आवाम की जेबों पर भारी पड़ते हैं। लिहाजा एक फलाही स्टेट के जुमरे में पहुंचने के लिए जरूरी है कि सेहतयामा से जुड़े मसाइल का एक मुस्तकिल हल पेश किया जाए। चूंकि हमारे समाज की आबादी की कसीर तादाद मुतवस्त और गरीब आवाम पर मबनी है, इसलिए साहिब सरवत प्राइवेट लेबॉरेटरी और क्लिनिक मालिकान से उम्मीद की जा सकती है कि वो भी आवाम के वसीतर मफाद की खातिर अपने जाती मफाद को कम तरजीह देंगे। तबसिरा खत्म हुआ। शब बखैर।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस सिरिनक।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: मेरी बाइक में
7: अभी तक आप आकाशवाणी श्रीनगर से उर्दू में खबरें और तबसरा सुन रहे थे। मीडियम वे पर हम आकाशवाणी करगिल से बोल रहे हैं। सामिन चक्के 8 बजे हैं, पेश खदमत है प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

जय हिंद। फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम फौजीबाई सुनने वाले तमाम सामीन की खिदमत में मेरा खलूस भरा आदाब। तो आइए सामीन, संगीत से भरे इस प्रोग्राम के आगाज में सुनते हैं फिल्म हीरो से एक गीत, जिसे गाया है मनहर और अनुराधा पौडवाल ने। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी जीत फिल्म में आपने सोनू निगम और अलका याग्निक को सुना। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा था नदीम श्रवण ने। लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत सुनते हैं, कर्मा फिल्म से, जिसे गाया है मनहर और साथियों ने। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी मौसम फिल्म में आपने भूपिंदर और लता मंगेशकर को सुना। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा था मदन मोहन ने। लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत सुनते हैं एहसास फिल्म से, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल ने। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है लोवेश शंकर ने।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच आज

0: सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में ब्लूमबर्ग के 30 वर्ष पूरे होने पर उसे बधाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियों के दौरान सरकार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर हटाने के सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। श्रीमती सीतारामन ने आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के दौरान अपने संबोधन में ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा कि बिम्स्टेक देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र का कोई भी हिस्सा आतंकवादी नेटवर्क को पनाह लेने, सदस्य बनाने, ट्रेनिंग लेने, फंड जुटाने या पड़ोसी देशों के खिलाफ गतिविधियां करने का अवसर न दे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। गृहमंत्री ने बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग के 5 अहम क्षेत्रों पर बल दिया, जिनमें ड्रग्स पर नियंत्रण, आतंकवाद रोधी और कानूनी सहयोग, भागे हुए अपराधियों की वापसी, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की जांच तथा संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण शामिल हैं। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एन मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में डॉ मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।
2: आई वॉन्ट स्ट्रेंथन माई पार्टी टू तमिलनाडु।
3: मैं तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं और 2029 के चुनाव की तैयारी के लिए जमीन तैयार करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने हमेशा तमिल गौरव को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि मुझे मंत्री पद से मुक्त कर तमिलनाडु भेजा जाए ताकि मैं वहां पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकूं।
2: तो स्ट्रेंथन द पार्टी।
0: डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि मंत्रिपरिषद में पिछले 5 वर्षों के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के धैर्य, करुणा और असाधारण समर्पण को करीब से देखने का अवसर मिला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को बदल नहीं सकता है।
2: लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। ये कार्य लद्दाख प्रशासन और स्थानीय पक्षों के परामर्श से किया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि इन स्थानों को आधिकारिक मानचित्र में दर्ज करने का उद्देश्य उनकी सटीक पहचान सुनिश्चित करना और आम लोगों में उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में

0: चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चेक गणराज्य के बीच साझेदारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है।
1: भारत और चेक गणराज्य के बीच आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित गहरे और पुराने संबंध हैं। बदलते समय के साथ भी हमारी ये दोस्ती कायम रही है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं हैं।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है, वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है।
2: जो भी समाज नशे की गिरफ्त में आता है, वहाँ एक पूरी पीढ़ी के बर्बाद होने का खतरा पैदा हो जाता है। अगर हम अपने समाज को नशे से मुक्त करने में सफल नहीं होते, तो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती होगी।
0: प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मास्टर प्लान की शुरुआत वर्ष 2021 में आज ही के दिन देश के बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से की गई थी।
3: पिछले 5 वर्षों में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक एकीकृत डिजिटल नियोजन मंच से विकसित होकर एक व्यापक भू स्थानिक नियोजन प्रणाली बन गया है, जो अवसंरचना, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के विकास में सहयोग कर रहा है। इसने जीआईएस आधारित मंच के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और अवसंरचना नेटवर्क को एक साथ जोड़ा है। आज पीएम गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1800 से अधिक डेटा लेयर एकीकृत हैं, जिनमें 58 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के आधार पर इस मंच पर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली लगभग 400 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि जीएसटी परिषद जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे अमल में लाया जा रहा है।
4: 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी देश में कर व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके तहत केंद्र और राज्यों के कई करों को एक ही कर व्यवस्था में शामिल किया गया। इससे एक देश एक कर की अवधारणा को बढ़ावा मिला। जीएसटी परिषद के प्रस्तावों का उद्देश्य जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक आसान, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाना है। पिछले साल जीएसटी में किए गए नए सुधारों के तहत जीएसटी परिषद ने 4 कर दरों 5, 12, 18 और 28% की जगह अब केवल 2 मुख्य दरें 5 और 18% कर दी गई है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी के माध्यम से सरकार ने करों की जटिल व्यवस्था को आसान कर दिया है।
5: जीएसटी के जरिए हमने टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है। बिजनेस से जुड़े सैकड़ों छोटी मोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है और भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है।
4: नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 58वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि परिषद ने जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को हटाने की सिफारिश की है।
6: परिषद ने जीएसटी के अंतर्गत गिरफ्तारी के अधिकार को समाप्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने का भी सुझाव दिया है। इसका मतलब है कि 5 करोड़ रुपए से कम की राशि के मामलों में अभियोजन नहीं चलाया जाएगा।
4: 9 वर्षों में कर प्रक्रिया को आसान बनाने और कर दरों में बदलाव से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को भी मजबूती मिली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण

0: एफआईआर के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देश हित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
0: यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सभी यूपीआई लेनदेन निशुल्क रहेंगे। एमडीआर शुल्क केवल 2000 रुपए से अधिक के ग्राहक से व्यापारी के बीच लेनदेन पर लागू होगा। व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी श्रेणी के अंतर्गत यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से प्रति माह 1 लाख रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को पहले की तरह लेन देन पर कोई एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार आज 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1109 अंक चढ़कर 73034 पर पहुंच गया। निफ्टी 359 अंक का उछाल दर्ज करता हुआ 22722 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 50 पैसे की मजबूती के साथ 95.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और हवाई हमले की स्थिति के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय समुदाय की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। भारतीय नागरिकों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने और उड़ानों की ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने प्रागवे में विश्व स्केटिंग गेम्स में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्षीय स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकेंड में तीसरा स्थान हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी। सेंसेक्स 73034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार बेलकुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

रहने और घरों के अंदर रहने का मशवरा दिया गया है। रियाद में भारतीय सिफारतखाने ने आज ये बात कही कि वो भारतीय बिरादरी को तआवुन फराहम करने के लिए हफ्ते के सातों दिन 24 घंटे कंट्रोल रूम खुला रहेगा। सिफारतखाने ने भारतीय बाशिंदों को पुरजोर तौर पर यह मशवरा भी दिया है कि वो इन दिनों जारी वाकयात से मुतालिक कोई वीडियो या खबरें एक दूसरे को न भेजें और न ही उन्हें रीपोस्ट करें। भारतीय बाशिंदों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपनी एयरलाइंस के साथ मुस्तकिल राबते में रहें और अपनी परवाजों के ताजा तरीन स्टेटस को वेरीफाई करते रहें। किसी शख्स से कारोबारी को मखसूस लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR दिवाली के बाद नाफिज होगा। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर अदायगियों से मुतालिक भारतीय कौमी कॉरपोरेशन ने कहा है कि आज UPI और खिदमात से मुतालिक कायमा कमेटी ने फैसला किया है कि त्योहारों को जहन में रखते हुए किसी शख्स से कारोबारी को मखसूस UPI लेन देन पर MDR दिवाली के फौरन बाद नाफिज होगा। आज घरेलू शेयर बाजार में 1.5% के इजाफे के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 109 पॉइंट का इजाफा हुआ और 73,034 पर बंद हुआ। निफ्टी में 359 पॉइंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 22,722 पर बंद हुआ। पैरागोई में आनंद कुमार वेलकुमार ने वर्ल्ड स्केट गेम्स 2026 में 500 मीटर स्प्रिंट में कांसे का तमगा जीता है। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले 23 बरस के तेज रफ्तार स्केटिंग करने वाले आनंद कुमार ने 40.856 सेकंड में 500 मीटर के इस मुकाबले को मुकम्मल किया। भारत की सलामी बल्लेबाज शिफाली वर्मा को ICC ख्वातीन प्लेयर ऑफ द मंथ का एजाज मिला है। उन्हें सितम्बर 2026 के लिए यह खिताब मिला है। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कनाडा के उनके हम मनसब मार्क कार्नी ने तिजारत, तवानाई, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात में कलीदी शराकतदारी को मुस्तहकम करने से इत्तफाक किया है। मरकजी वजीर एल मुरुगन ने वुजरा की काउंसिल और राज्यसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है। भारत ने एक बार फिर कहा है कि लद्दाख मुल्क का एक अटूट हिस्सा है और चीन की जानिब से किसी भी किस्म की तरदीद इस हकीकत को नहीं बदल सकती। फर्द से मर्चेंट को की जाने वाली मुंतखब ट्रांजेक्शन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट शरह पर दिवाली के बाद अमल किया जाएगा। घरेलू मार्केटों में 1.5% का इजाफा हुआ। सेंसेक्स 73,034 पर बंद हुआ। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Daksa sa 35 Akashwani Delhi kana Hindi ang residu na urdiyang khabaron niya nirepin. Media mikka nga ches Akashwani Kargili kana zirinyot. Wakspo tusot. Rguna minute sungchu sungsuk. Kasata program niyan mezet. Shina program punar. Program prachukhan pi in Mukhtar Ahmad Zahid.
1: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
2: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
3: बस यही पूछो वाई रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक वाई आपको फ्रॉड से बचाए।
1: हमेशा पूछो WHY, वाई कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।

0: टाइमली हल खानी होने वार हैं जो
1: बेशक जो बेशक जो अनिथो राजा अनु जमाना जा अनि स्ट्रेस थनस या आकी अकोज भई मनुर से अकोज से मुर्दियों बे हूं तो अनि मेंटल हेल्थ एक तो सोचा रजत की बेस अनि से जा जानकारी दोनस थे अनि से जे एक अनि मुत इसकी में तो गहे दानी आयुष्मान भारत फर्स्ट है इसकी महे धनुष की जनोर धरो थे की इलाज थी तो
0: बिल्कुल जो बेशक अनि स्कीम
1: माली इमदाद थे
0: माली इमदाद जैसे अनि अगर मेंटल हेल्थ तो अगर परेशानी का है तो जो जहनी अगर खुदा न खास्ता नौजबुल्ला जी टी गने बोनी अगर अनाए परेशानी है तो उससे का अनि एबीपीएमजेवाई स्कीम ओ थ्रू कवर बनी जो
1: अच्छा
0: अनि स्कीम का एक दुमो गो फिर मजीद जो अनि से मुसु वेडी वेट थम फिर एक चीज एक जरूरी है अहम है अशो दौरे जैसे चून असने जवान बाल जहां से टीन एज यो डाइवर्ट बना
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: सिगरेट जा या आम अलग किस्म अश बीमारी माहौल जे मतलब मलाए ड्रग्स एडिक्शन वगैरह है या आया चीज बुढ़ियों तरफ का बाल मलाए रिजू भी और जो डाइवर्ट भी हूँ हाजू से सिकारियों का फिर असो फिर मजीद प्रोग्राम के किए जो हूँ माँ अहम प्रोग्राम एक नेशनल टबाको कंट्रोल प्रोग्राम से जो ऑलरेडी में जैसे किने को रची वाला ली बी सिगरेट पियो नस या असनी परेशानी बोन तो मजीद सिगरेट सूर्य डबे डबे छम थो नस मजीद नसवारे खैने या अले
1: मजीद फिक्र को धुए में उड़ाता चला
0: बिल्कुल जो बेश बजा फरमाया तो उससे बुढ़ी रहेगा नेशनल टबाको कंट्रोल प्रोग्राम थी फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम की जो हूँ लद्दाख बुढ़े इम्प्लीमेंट बोई हूँ जो सो प्रोग्राम अनि पुराना हॉस्पिटल चला अच्छा। जहाँ मैं जो कंटीन असल हिस्सा दे अनि सुगा क्लिनिक की बजाबिता दवाई पेज वगैरह देना
1: सिगरेट हो नस्वार होगा बे एक नाला नाला
0: बिल्कुल
1: तो धमाक होगा नहीं फट होने का रोबोटिक सो जब प्राय वाले गाने थे अन करगिल में जो को अस्पताल में उठो तो कम एक बेस वाली हेल्थ हाइजीन बारे का सने यानी के शनाबाश थे असने चा कुरी का सने सजारे मलारे गांव में सची कभी पार खल नहीं कभी सुमे कस डुक तो जनने छाल वालों सा चूने छाल वालों सा तुझे डुक भोज मुलाकात हो जाए यार उन्होंने दूध प्यारी हो जाए अन्य चीज बेस्ट रकोन यानी बारे हेल्थ हाइजीन का चाक अहमियत है मेडिकल साइंस के बारे रजीगत मिश्र ने
0: मां बूढ़ो जो को तो अनुभव प्रोग्राम बूढ़ो जो अहम सवाल थो थे का जो जाहिद साहब हेल्थ हाइजीन बूढ़ो जो थोश इम्पोर्टेंट बिल कनी का बेसु में जो रजीन ने बुझना लज एक फेमस इंग्लिश कोटेशन एक गही रे जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर
1: बेशक मिश्र
0: एहतियात इलाज से बेहतर है तो बूढ़ो जो जरूरी बिल जो जैसे बेस पांच वक्त नमाज सुनस तो पांच बार हाथ धोई बोजनास ठीक आई फर्श बोई एक चीज का है जो छो अनु प्रोग्राम हो थ्रू अनि मैसेज कौन देने को रसने परुजन को बुढ़ो रहे खुसूस मास हजार रहे दूर गांव में जब यहाँ को परुजी फायरी बजम कनी का बीमारियों बुढ़ो जो मेन बुढ़ो जो अहम इलाज ही अनि बिल एहतियात अगर थी तो असोया टेम टेमाए असोने हाथी धोए साबुन की ठीक थे बाई ने खेच तो मे जगह बाई के पतनियों वही वाशरूम में डायरेली मे जगह गे पतोगा कनी का बीमारी जो जैसे कोरोना जा रजी ने बुझ नल दा बार बार हाथ धोया हाथ धोया ले तो अनि बीमारी दूर बोनी ही तो ठीक फैलाई बेन कनी का बीमारी जो हाथ बार बार असो जे धोए हाथ ही साफ छुरे क्योंकि हाथ ही आजे बुझ कनी का इन्फेक्शन उड़ाई बोया नहीं हवे जो ओई असनो आजीनो तैयार रेसो थ्रू बोजी नुशु आसी करो हाथी मा धोयो नहीं लाई जरूरी बिल कनुगा अक्सर बेस्तर स्वामी परुजी बुझा स्कूल हो जाए या डिपार्टमेंटो असे स्टाफ से हर दिशा गांव में जो वही कैंप्स भी का कैंपेनिंग थे ना कि हैंड हाइजीन है जा हाथी वगैरह साफ थी कंटिन्यूसली धोई हूँ बेटे कनु क्रम थे पतोगा या जैसे असने मास हजार परुजी में ही जैसे गाँव वो छाउ छो ने बोजोनास या गोया रे तो खलियो ने बोजना अले प्रपाल खलनास कनुगा क्रम थे पतो बाई निखेश तुम्हे जे या बाल मुला अरे मामा मुने देश तुम्हे जगह साफ सफाई जे हाथ वती दो ही पत्नी उठे जलेस तो भाई 90% बीमारियों जो बचाए गो
1: रक्षी बस जो बेशक तो जहिर साहब बहुत ही मिष्ट सुधार से मुर्द रजीगा जहिर साहब के भाई असनी कोई जो कचा खनस तो का भाई गांव में सचो नस सुम का पारस नाला बिल टू क्यों बेनस अक्सर कि असनी आबादी लाई भी गांव में जानस तो सुनर थो एक मिष्टी मिष्ट मुर्द रजीगा तो तू असो स्टडीज आलू मगम थी एक बोधक ऐसे यानी चाकुर ऐसे सस मदर पेश थेगा तो मिश्र ने भी था थी कि आखिरी बोधक जो खनी असरे कौन ने करे
0: मेहरबान जी शुक्रिया जाहिद साहब मी आखिरी बोध अनु मिस्टर प्रोग्राम है जो पता नहीं जो अशु अनु दौर जब मोबाइल लेगा कि ने परेशानियों मजा खटीजी
1: हाँ बेशक
0: असने परेशानियों मजा खटीजी
1: मोबाइल परेशानी
0: बिल्कुल जो मोबाइल मोबाइल से असो इम मोबाइल से आ रही

0: बेशक
1: तो मी मैसेज अनु प्रोग्राम थ्रू आ हैं जो कि जकुरे अश मजीद असने बलोरे बथन जवान और बथन जारी जर और बुढ़ो रे बथन असने परेशानी गानी मोबाइल डेवे बुढ़ी फत थे तो खजी सोशल एक्टिविटीज हुए जैसे गेम्स भी हुए हैं किस्म किस्म खेले बनाई या अलेपुर सोशल में सुक्रोमित होना एक्सरसाइज छोनी तो चलू को बाजू को टाइम एक्सरसाइज थे या खेल कूद के भी हमेशा अगर इन्वॉल्व बैठे तो असने अन्य मेंटल हेल्थ इलनेस आया बुढ़ी का दूर बो नहीं आम बीमारी एक बुढ़ी का दूर बो नहीं तो मी मैसेज ही अनी है परुजन एक बुढ़ो रे जाहिद साहब सोन प्रोग्राम थ्रू की थोश बक एक्सरसाइज का अलीपुर को करिकुलर एक्टिविटीज का गेम्स वगैरह आया बुढ़िया में थोशी इन्वॉल्व लिस तो थोशी बगनिया बीमारी जो दूर है
0: अजूत जहीर साहब तो रारे का सजारे अनुसोलो जहीर साहब जहीर अब्बास डिस्ट्रिक्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट हेल्थ डिपार्टमेंट कारगिल तू असो स्टडी जा आलो मुसलाइल अजूत
1: शुक्रिया जी मुख्तार साहब थैंक यू
0: रारे का सजारे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बारार मुश्किल कुंडगीस अजू को मनाट्री असलो जहीर अब्बास डिस्ट्रिक्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट हेल्थ डिपार्टमेंट कारगिल अनस साथी तो वाता प्रोग्राम छुपा जा आबिदा खानों में शुंगा जा नात रसूल मकबूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंडे बजा।